0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्य

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 20वीं तिथि। तदनुसार 11 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी

0: रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

के आपाधापी वाले दौर में किसी से पूछो क्या आप समय निकालकर प्रभु का ध्यान करते हैं, जवाब आएगा समय ही नहीं मिलता। एक बोध कथा है कि एक सेठ जी का सारा समय दौलत कमाने में निकल जाता था। एक बार उनके घर एक धर्म गुरु पधारे। उन्होंने कहा, सेठ जी, जीवन बड़ा ही अनमोल है और क्षण भंगुर भी, इसलिए ध्यान के लिए भी समय निकालें। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी, मन तो बड़ा करता है पर क्या करूं, मेरा लड़का अभी कुछ छोटा है, वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चलाने लगे, बस 2-3 साल और मेहनत कर लूं, उसके बाद तो समय ही समय है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। धर्मगुरु ने मुस्कान फेंकी, तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम्हारे पास 2-3 साल का समय है, ईश्वर के विधान को तुम कैसे समझ सकते

सकते हो। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। धर्मगुरु चले गए। सेठ जी व्यवसाय में मगन हो गए। उन्हें अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, इसलिए प्रतिदिन सुबह थोड़ा थोड़ा पैदल घूम लेते थे। एक दिन टहल रहे थे कि एक ट्रक ने चपेट में ले लिया और वे परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्हें गुरुजी का कथन याद आ रहा था, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। समय हमें निकालना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन भर हमें अच्छे कामों के लिए समय नहीं मिल सकेगा और हम अपने ही राग रंग में डूबे रहेंगे। प्रभु भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप घंटों भक्ति में डूबे रहें और सारा कामकाज छोड़ दें। हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में अपने अपने ईश्वर को ध्यानस्थ होकर याद करें। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या पारसी, अगर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हम उनके ही दिव्य गुणों से जुड़ते चले जाते हैं। मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। हमारा मन निरंतर निर्मल होता चला जाता है। हम ध्यानस्थ होकर सदाचारी मानव बनकर विश्व कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ध्यान योग है। इससे जुड़ने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी शक्तिशाली बनी रहती है। चरित्र भी मजबूत होगा। इसलिए समय निकालकर कुछ पल बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हम आत्ममंथन भी करते रहते हैं। तो चलिए आज की प्रातःकालीन शुभ घड़ी में ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। 7:30 10:00 व 12:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11:00 समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। 5:30 व 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसानवाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या। 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:00 समय रहेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतीनी बात कार्यक्रम। एपिसोड 154।

खेती ने बात हमारा वाला सर किसान भाइयों ने किसान बहनों ने सोराडे तक की नानी बहनों राम राम राम राम। देखो किसान भाई हर हर मुट्ठी है ना बड़ा खेती बाड़ी में काम का हमारे ऊपरी मौसम डाड़ा साले रहे थे कहीं अपना समय में खास कर खरीफ फसल खास कर मक्का सोयाबीन है धाननी फसल है फसल जी उड़द है तुअर है ये भी करी रह सका है। खोड़ खरपतवार है इन्हें नियंत्रण अपने समय पर करव जरूरी है क्योंकि जी अपनी फसल मुख्य फसल है इन्हें अलावा जी अन्य सम जी खोड़ है इन्हें अपने समय पर नियंत्रण नहीं करना अपनी फसल सही तरीके से कि गाड़ी बड़ी नहीं सके इन्हें उत्पादन सही नहीं था इसलिए अपने समय पर तो तुम्हारा किसान भाई हूँ है कि आप छोटो है ने अपने नियंत्रण कर दूंगा तो अच्छी रहे वधारे बढ़वा थकी अपने मेहनत ने खर्चो वधारे पड़ी जाए नहीं समय ऊपर खरपतवार काढ़ी दे वही ताकि अपन फसल अपनी अगाड़ी बढ़ी सके मक्का सोयाबीन में भाई के पासा अकड़पो

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं,

धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और अभी आप सुने अपने सुना चंपा में थी व साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे देशभक्ति रचनाएं। कवि हैं नरेंद्र पाल जैन।
1: नमस्कार, कुछ रचनाएं प्रस्तुत हैं। मेरे परिवार की खुशियां तुम्हारी और बढ़ाता हूँ। सरहद पे खड़ा हुआ एक सैनिक क्या कहता है,

और जब एक शहीद की पार्थिव देह घर पर आती है तो उनकी माँ को समर्पित चार पंक्तियां हैं। कोई भी माँ हो बेटे से तो कितना प्यार करती है,

तो काजल से वो श्रृंगार करती है, लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ, लहू में भर के लोहा रखती है हर एक शहीद की माँ, वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है, वो अपने दूध से सिंहों को ही तैयार करती है। और हमारे देश की ये पावन धरती कैसी है, चार पंक्तियां प्रस्तुत हैं। किसी भी तीर्थ से पावन है ये बलिदान की माटी, किसी भी

बाटी। किसी भी धर्म जाति से न बिखरी है न बिखरेगी, इबादत प्रार्थना पूजा है हिंदुस्तान की माटी, इबादत प्रार्थना पूजा है हिंदुस्तान की माटी। और जब एक शहीद तिरंगा ओढ़कर जब आता है तो उस पर एक गीत लिखा है, सुनिएगा। क्या खूब दीवाना था वो उस

एक सरहद पर लहरा कर एक तन पे ओढ़ के आया।

एक युद्ध रहा था बाहर, एक युद्ध था मन के भीतर। आँखों में गांव की गलियां, गोली सीने के अंदर, लड़खड़ा।

धड़ उसने धरा नहीं था। अभिमन्यु सा हो कर वो दुश्मन को तोड़ के आया।

और जब एक शहीद का पार्थिव देह आती है, उसकी पत्नी देख करके उसके मन में किस तरह के भाव आते हैं, ऐसे दृश्य हमने

कई बार देखे हैं, तो उनको समर्पित एक उनके मिलन का जो दृश्य है उस रचना में मैंने लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि का

या और तब उसका मन क्या कहता है कि माना कि कुछ वादे तुमसे किए अधूरे रहे मगर कर

0: Beleza?
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी देशभक्ति रचनाएं। कवि हैं नरेंद्र पाल जैन। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आप सभी को सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं जाने अनजाने फिल्म के इस गाने से।

जाने अनजाने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन। एक और गाना आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मेला फिल्म से। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आरटी वर्मन।

मेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, धुन आर डी बर्मन ने बनाई थी।

0: आज बना वो लाख पति, कल तक था जो कड़का।
1: लाखों में एक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं।

कदर ऐसे वैसे की हर देश में पूजा हो पैसे की, हो चाहे हो पटियाला भाई चाहे

मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में फिल्म लाखों में एक का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आरडी बर्मन ने धुन बनाई थी। हमें राही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था सचिन देव बर्मन ने। इस गीत की धुन बनाई थी, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे।
3: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
1: कॉमिक क्रिएटर है।
6: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
6: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर

0: आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये परवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

परवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थे मदन मोहन की, हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज यही दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल।

0: inclusion ka. Small merchants remain central to UPI's inclusive growth. Unke upar hum koi MDR lagane wale nahi hai. Irada nahi hai. Enabling provision ka hum dhyan rakhna hai.
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देशभर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने

0: खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H1B और

0: वन वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी वांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।
3: आप सभी को

सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारा विषय है देश। देश का मतलब सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं, देश हमारी पहचान है, हमारी सांस है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस भाषा में हमने पहली बार माँ बोला, जिस तिरंगे के नीचे हम बड़े हुए, वही हमारा देश है। कवि ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही भाव हर भारतीय के दिल में बसता है।

श्रोताओं, भारत विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक अलग अलग भाषा, पहनावा, खान पान है, फिर भी सब एक हैं। किसान खेत में अनाज उगाता है, जवान सीमा पर पहरा देता है, शिक्षक कक्षा में भविष्य बनाता है, डॉक्टर अस्पताल में जान बचाता है। सबका लक्ष्य एक ही है, देश को मजबूत बनाना।

श्रोताओं, देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी पर झंडा फहराना या भाषण देना आदि नहीं है। असली देशभक्ति है कर्तव्य निभाना, कानून मानना, संसाधनों की बचत करना और समाज सेवा करना। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने हमें सिखाया कि देश के लिए जीना और मरना दोनों गर्व की बात है।

श्रोताओं, हमारा देश 5000 साल पुरानी संस्कृति का वारिस है। योग, आयुर्वेद, नालंदा विश्वविद्यालय, ताजमहल, ये सब हमारी विरासत है। त्योहार हमें जोड़ते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व सब मिलकर मनाते हैं। यही संस्कृति हमें दुनिया में सबसे अलग बनाती है।

श्रोताओं, आज का युवा देश का भविष्य है। हमें टेक्नोलॉजी से देश को आगे ले जाना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब इसी सोच के नतीजे हैं। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर पहले भारत

बनना होगा, तभी हम 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में, प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 20 दिन में 1624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात से नदियों में पानी की बेहतर आवक, सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ के सुनेल में दर्ज की गई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इसके तहत 6000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी। श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के साथ कृषि शिक्षा को मजबूत करने का प्रमुख साधन भी है।
2: सब तो समय पर चले, परीक्षाएं टाइम पर हो। कई सुझाव मेरे बेटा बेटी आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षा वरीक्षाएं सब निपट गए। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई।
1: उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सिरोही और राजसमंद जिलों में चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 68,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन उर्वरक खरीदा है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली के तहत किसान खेत से ही ऑनलाइन बुकिंग कर QR कोड के माध्यम से फसल की वैज्ञानिक सिफारिश के अनुसार उर्वरक खरीद सकते हैं। इससे उर्वरक

0: बिक्री में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी तथा जमाखोरी और डायवर्जन पर रोक लगेगी। श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित आपूर्ति जारी है। उपमुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कल राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट शुरू होने से परिषद के कामकाज में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। वेबसाइट के माध्यम से आयुर्वेद नर्सिंग में प्रवेश, काउंसलिंग, पंजीकरण, संस्थाओं की संबद्धता और नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। परिषद की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी एक क्लिक पर मिल सकेंगी। गौरतलब है कि इस वेबसाइट को राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर और आयुर्वेद निदेशालय अजमेर की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले 20 दिनों में 1624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान में नशा तस्करों, साइबर अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 848 एनडीपीएस मामलों में 1158 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के मामले में 624 लोग पकड़े गए और लगभग 3 करोड़ रूपये से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई। अवैध हथियारों के मामले में 396 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2,32,000 से अधिक कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा के तहत 2,835 मामलों में कार्रवाई की गई। और अब मौसम। प्रदेश में कल कई स्थानों पर अच्छी बरसात हुई। हाड़ौती अंचल में जमकर बादल बरसे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में लगातार बरसात से नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए। तेज बरसात से आम जीवन भी प्रभावित रहा। कोटा के दरा घाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण यातायात बाधित रहे। बूंदी में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात हुई और वहां 30 सेंटीमीटर पानी बरसा। झालावाड़ के बकानी और पिरावा में 25 सेंटीमीटर से अधिक बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कोटा के दिगोद, रामगंज मंडी, सांगोद और चेचट में भी भारी बरसात हुई। करौली में देर रात झमाझम बरसात हुई। विभाग ने आज भी हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। वहीं लगभग 20 स्थानों के लिए हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। बड़े पुल, बिजली संयंत्र और पाइपलाइन जैसी संरचनाओं की सुरक्षा में वेल्डेड जोड़ अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जोड़ों को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए IIT जोधपुर के वैज्ञानिक वेल्डिंग की नई तकनीक और सामग्री विकसित करने पर शोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मैकेनिकल विभाग की शोध टीम समुद्री और ऑफशोर क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए हल्की और मजबूत कम्पोजिट सामग्री विकसित करने पर काम कर रही है। इससे कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाली संरचनाओं को और अधिक सुरक्षित तथा टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकेगी।
1: वैज्ञानिक रेड ऑक्साइड जैसे प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल खनिजों का इस्तेमाल कर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड विकसित कर रहे हैं, जिससे जोड़ अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगे। टीम ऐसी वेल्डिंग सामग्री और तकनीक विकसित कर रही है जिसका इस्तेमाल अत्यधिक तापमान, दबाव और जंग वाली परिस्थितियों में किया जा सके। इसका लाभ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों, पाइपलाइनों व समुद्री संरचनाओं को मिल सकता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: पंच गौरव कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पंच गौरव के तहत चिन्हित उपज और वनस्पति प्रजातियों की प्रसंस्करण इकाइयों को भी नीति के तहत लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और किसानों तथा उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नीति के तहत भरतपुर में शहद और कदम्ब, अलवर में प्याज और अर्जुन तथा जयपुर में आंवला और लहसोड़ा से संबंधित प्रसंस्करण

इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस सबसे पहले

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पंकज उदास की आवाज में कुछ गजलें।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुनी पंकज उदास की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मीरव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिरायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी जी जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार

0: हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो
1: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें
0: जी। तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था, उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई।

0: दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रोलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रोलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नौ।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: बताकि
1: धनर्दान के सामने नर लगन कैसी हिम्मत की चाहता है इन्हें कोरियर से भून डालू नो नो नो मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
2: इंतजार जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम

0: 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे, ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपने खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रहीं। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
4: ए, ए, ए, ए, गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर
5: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
4: और शट अप। देख, ये सबक काफी है।
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
6: मासी, मासी मेरी लाची थी करते मासी, मासी, मासी मेरी लाची
7: थी करते करनिया, करनिया।
6: पानी
7: पानी
6: पानी।

0: 해달라고 해달라고 나한테 가자니 난 가자니 해달라고 해달라고 말한대 해달라고
1: 어떻게 가는 거야?
2: 맨날 당해야
1: 왜?
2: 안돼!
3: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई
4: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
3: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरांवाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
5: जनरल डार, यस सर, आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
6: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
6: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या वार्निंग नहीं दी?
6: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था।
7: वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
5: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
7: मेरा मकसद गोली चलाकर फेक को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
3: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
4: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
8: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
9: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद

0: 这还站着站
1: 着站着站着站着站着站着站着
2: 站着站着站着站着站着站着站着站着站着站着
3: आप भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
4: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
5: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दिशा, दिशा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह,
2: छह चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ, तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी।

0: कमाल है भाई, ठीक ही है। दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
1: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: FM बैंड 103 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर संजय भदादा से, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी ऐसे विशेषज्ञ जो हार्मोन्स, ग्रंथियों और एंडोक्राइन सिस्टम के विशेषज्ञ होते हैं। तो चलिए करते हैं बातें डॉक्टर संजय भदादा से। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने ही की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय भदादा, जो चंडीगढ़ के पीजीआई में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च का काम भी किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद बुलाने के लिए विविध भारती से।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है, इसका काम क्या है?
1: सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है, हार्मोन से डील करती है।
0: जी।
1: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
0: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशन होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
0: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के, और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की, तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज

0: बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है, अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देखरेख करते हैं। उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है समझी जाती है वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के 4 साल के या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से जब हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसकी जड़ में नहीं पहुंच रहे। और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है और अल्टीमेटली इसके वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
1: यहां मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में 3-4 आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी जी।
0: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रॉमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लगी फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन।
1: टूट फूट हुई
0: उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग।
1: अच्छा,
0: है ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी,
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया फ्रैक्चर हो गया, 2 सीढ़ी स्किप हो गए गिर गए फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास। पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में।
1: जी।
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पर पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है

अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण

0: पेन आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी,
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूं कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि महावारी कैसी चल रही है। महावारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर महावारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी महावारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बच्चों ने मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत
0: बिल्कुल जाना चाहिए, बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोस कर सकते हैं हम,
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल,
1: करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है।
1: क्या हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत आनंद बख्शी की बोल आर डी बर्मन की तरह सुनते हैं ये गाना।

0: अपना कहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है।

0: मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह
1: जी जी,
0: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब।
0: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
0: उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80-90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी।
0: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल देता हूं, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रोमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए
1: जी,
0: तो इसका मतलब क्या हो, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
0: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है, हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, एक कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी, कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, ये पुराने जमाने में
0: ज्यादा होता था,
1: देखा जाता था।
0: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी।
0: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोटा हल्का चोट लगे तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कोर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
0: ये बिल्कुल, कोर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि अगर आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, ये वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
0: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसा कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कोर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके।
0: हाँ, तो इसलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या
0: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित।
0: जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
0: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, जिन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं।
1: जी।
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी।
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज्यादा बना रहा है।
1: ओके।
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा 7 फीट का हो सकता है और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे।
1: अच्छा।
0: जैसे आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट वो जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ गए।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो एशिया के सबसे लंबे,
0: वो एक पंजाब में भी कुछ है
1: जी,
0: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहां एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही है, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं

0: एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहां पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर डीसी शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहां भेज देता हूँ। वो वहां पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह पर, कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम एक डेढ़ महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ,
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो इलाज कैसे किया जाए
1: जी।
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर और उसकी मामी मामा जी उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है
1: जी,
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइन चल रही बोन की तो एकदम एग्जर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मेनोपॉज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है। जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहां पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: मालिश करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया।
1: ओहो।
0: और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक दो की जगह एक और एक 11 हो गया और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया
1: जी।
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़ रहा है।
1: तो ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो, आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए।
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूं कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी,
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए? मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब जैसे आपने बताया मीनोपोज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपोज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगे
0: जी।
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रिमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात जैसी संधि है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए
0: जी।
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
0: जी,
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो गए।
1: अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि मां को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता है।
0: ये बहुत याद रखने वाली बात है सभी श्रोताओं की।
1: बिल्कुल, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं कि आपको कब्ज रह रहा है, अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है
0: जी। जी,
1: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी

0: थर्ड एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है
1: जी,
0: धुंधला हो जाता है, तो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है,
1: नूर चला जाता है,
0: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है।
1: फिर महिलाओं में भी इस समस्या को लेकर,
0: महिलाओं में दूसरी समस्या उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
1: जी,
0: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
0: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों को, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
1: जी,
0: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप।
1: अच्छा, वो सील ही बना ली,
0: सील लगा दी, क्योंकि हम मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है,
1: बहुत ध्यान रखना है।
0: हाँ, कुछ एक पेशेंट को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है।
1: ये कौन सा वाला है?
0: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
1: जी जी।
0: अब दूसरा, इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है
1: जी,
0: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
1: ओके,
0: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव हो सकता है कुछ भी करने से, उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गया, आपको सिम्टम्स आ गए, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना।
1: और इस 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते,
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी जी,
0: ईयरली चेकअप में आपको इस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये, तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा
1: जी,
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज्यादा है तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है
1: जी,
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा आपने जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे अच्छा
0: मतलब
1: उपाय है,
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए
1: जी।
0: तो ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना
1: तो बताइए कि ये जो मामला है
0: डायबिटीज, एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे
1: जी जी,
0: क्या बोलते थे, राज रोग,
1: मतलब राजा महाराजा लोगों को होता था,
0: अभी ये क्या हो गया, आम रोग
1: जी,
0: अब हर किसी को डायबिटीज हो रहा है।
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल,
0: आप ये कह सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है
1: जी,
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है
1: जी।
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरमेंट की वजह से होती है,
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर। तो आपके एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड है जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया, जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे बी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा।

0: तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं, वो अनहेल्दी है।
1: जी जी।
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है, ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को। तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है।
1: जी जी।
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है।
1: जी।
0: तो ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट हो गई उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से।
1: जी।
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों? कि हम खान पीने उधर से सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता है।
1: अरे गजब।
0: है ना।
1: जी।
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के जरिए खाना मंगा रहे हैं,
0: ऐप के जरिए खाना मंगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया। तो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना। जैसे खासतौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते, और सुबह में टाइम पे। तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग।
1: जी, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत ज्यादा चल रहा है।
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोगों ने अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं। ठीक है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है।
1: जी।
0: जैसे रमजान रखते हैं तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते हैं, 12 घंटा भूखे रहते हैं।
1: हाँ।
0: ठीक है। अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके अंदर आप दिन में खाना नहीं खाते हैं, फलाहार लेते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है। तो पहले से कंसेप्ट है, या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती है कॉमन है उनको भी, अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे दूसरों का उतना शायद पता नहीं। तो ऐसे फास्ट रखते थे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए।
1: जी, जी, जी।
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज हो सकता है कि हम ये हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी जी।
0: तो उसका रीजन ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूं कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए। तो आप हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो।
1: क्या बात।
0: और उसका बहुत अच्छा असर होने वाला आपकी हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे ये सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह लंच ब्रंच जैसा कुछ? हाँ, है।
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया,
0: कुछ लाइट ले लिया, तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग।
0: ये इंटरमिटेंट
1: 12-13 घंटे
0: 12-13 घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: हाँ।
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा।
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है, ओपी नय्यर का संगीत। सुनते हैं
0: ये

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक।
0: आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी,
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता।
1: तो सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा।
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है।
0: अच्छा।
1: कि आप कितनी बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितनी बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, ये दोनों
0: जी
1: पेयरिंग में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से
0: जी,
1: और ये 6 हार्मोन्स बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
0: प्रजनन का काम है,
1: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहां से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स।
0: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
1: पूरा शरीर कवर हो गया। उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है
0: जी,
1: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से।
0: जी जी,
1: ऐसा शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो एमडी स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना। हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने पैंक्रियास का जिक्र किया। इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
1: तो पैंक्रियास का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से आप देखेंगे तो, पैंक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज है। पैंक्रियास का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है
0: जी जी,
1: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है। क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
0: क्या वजह होती होगी इसकी?
1: इसकी वजह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना।
0: अच्छा,
1: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है। तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
0: दोनों हो रही है, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी।
1: हाँ, फिर से बैलेंस का जरूरत है। बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे महिलाएं कैसे निपटे खासतौर पर?
1: या अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मेनोपॉज में जो चेंजेस होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीजों का एक तो जानना जरूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे।

0: तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को। तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज्यादा है तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है घबरा, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है, तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफी रोल रहता है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत जरूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करना ज्यादा जरूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज्यादा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनका देख रेख करेगी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद में बाहर की चीजों पे आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
0: बिल्कुल, अगर
1: प्रक्रियाएं
0: बैलेंस
1: सही
0: नहीं है तो
1: चलना
0: आप
1: ज्यादा जरूरी
0: जैसे
1: है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन एक्सेस में तो बाल गिर सकते हैं, तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
0: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
1: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
0: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
1: अरे बाप रे,
0: 1200
1: 1200!
0: हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
1: जी,
0: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
1: अनुभव बढ़ेगा,
0: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है आप पहचान जाओगे, यार ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
1: जी,
0: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोस करते हो, आप ट्रीट करते हो, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मजा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं, या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज्यादा काम करने का जरूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीजों का जो कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयां आई कहां से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
1: संभव है,
0: में
1: नेचर के जरिए।
0: कहीं कहीं है, तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में या जैसे हमारा यजुर्वेद है वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीजें हैं। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
0: हाँ,
1: मेडिकल
0: उसमें
1: की दुनिया में।
0: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना, ऐसा लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते रहे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एंजॉय दैट, पेशेंट एक्सपीरियंस तो आई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है।

0: है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस तरह।
1: वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
1: क्या बात है, सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: राजस्थान मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि सब रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: रहना ही चाहिए।
1: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को?
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी,
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का जरूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी जरूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज होती है पर उनको पता नहीं चलता है।
0: जी, तो इसलिए टेस्ट बहुत मायने रखता है।
1: टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज पता चलता था, बात है कि वो आंख का ऑपरेशन कराने के, तो आंख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ।

0: और शुगर आ गया है ना, या कोई हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी भी ये टेस्ट कराओ तो डायबिटीज का टेस्ट कराया तो आ गया, तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो डायबिटीज के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, इसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
1: जी जी।
0: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज के लिए कर सकते हैं।
1: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जगरे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा।
1: जी जी।
0: तो ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका जरूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है, पर मुझे खासतौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, निकलोगे नहीं। तो उसका वो ये कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है, और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3 T4 TSH एक टेस्ट होता है।
1: जी जी।
0: थायराइड का ज्यादा महंगा नहीं होता है, अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय बरारा, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की जरा हाईलाइट किया उनको फायदा होगा उसे। धन्यवाद,
1: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बरारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM बैंक 37.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कैलाश खैर के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कैलाश खैर के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

看。

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना कैलाश खैर की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म एक दूजे के लिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में गीत। बोल हैं आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अगली पेशकश मैंने प्यार किया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है असद भोपाली की और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में फिल्म हम आपके हैं कौन से। ये गीत बोल है देव कोहली के, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

नीचे सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म हम दोनों से ये गीत। शब्द रचना है साहिर की और संगीतकार हैं जयदेव।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: सिंबॉलिक सिद्ध दशमलव 3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के
1: मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं।

0: उस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम। बस कुछ ही पलों में

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बस तुम रहते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ही गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आई सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थी अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है डे दनादन। इशात कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।
3: कितने अरमान

ये आवाज थी हेमेश रेशमिया की और आइए अब सुनते हैं अनुमलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल आवाज रूप कुमार राठौड़ की फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन नाचिको शुक्रवारी कर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारत।

साजिद वाजिद की संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में। फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: भी क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी।
2: प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio.

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम सुरीला सफर का। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है हमने और यही हो भी रहा है। हमारे श्रोता रेडियो की उस ओर बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी में कोई भी रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब जहां वहां कुछ संवाद हो, है ना? हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि संवाद से ज्यादा आपसी समझ होनी बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। क्यों? जैसे कि सुरीला सफर में हम आपके लिए आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। सोचिए अगर हम इधर बात न करें तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? और उधर से आप अपने संवाद, अपनी बातें, अपने विचार हम तक न पहुंचाएं तो ये कार्यक्रम कितना अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संवादों का महत्व बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें किसी भी गीत में आरंभ में या बीच में कहीं भी छोटे छोटे संवाद हमें सुनने को मिल सकते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते जब बीच में हमें कोई छोटा सा संवाद सुनने को मिलता है ना, तो पता ही क्या होता है, एक पल के लिए हम उस संवाद को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये अभिनेता या ये अभिनेत्री क्या कह रही है, ये गायक या ये गायिका क्या बोल रही है बीच में। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो वो संवाद हमें बहुत कुछ कह जाते हैं गीतों के जरिए कि इस गीत में ये संवाद किस लिए रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। और यकीनन जब आज हम सुरीला सफर पर निकल चुके हैं तो संवाद करते रहेंगे, है ना? आपस में बातचीत हम करते रहेंगे। हमारी इबारत भी आपने पढ़ ली है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत को आपके सामने रख देते हैं। आज हमने लिखा है कि रिश्तों में संवाद बनाकर रखिए, संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज के गीत केवल पुराने गीत समझ कर मत सुनिएगा, इनमें छिपी बातचीत को सुनिएगा। किसी में प्रेम मिलेगा, किसी में बिछड़ने का दर्द, किसी में शिकायत, किसी में उम्मीद, किसी में रिश्तों की मिठास और किसी में जिंदगी की सच्चाई। और शायद किसी संवाद को सुनते सुनते आपको भी अपने जीवन का कोई संवाद याद हो आए जो आपने किसी खास व्यक्ति से किया था, है ना? कोई व्यक्ति याद हुआ है जिसे बहुत कुछ कहना था लेकिन आपने कहा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम की तरफ से एक छोटी सी बात यही है कि रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए, उनके बीच संवाद कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते जीवित रहते हैं और जहां रिश्ते जीवित रहते हैं वहीं जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तो इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये कार्यक्रम। और हां, इन गानों में आने वाला संवाद शायद आपको भी अपने जीवन की कोई कहानी याद दिला दे। तो समझ आया कुछ कि आज कैसे होंगे गीत? भाई हमारे श्रोता तो समझ चुके हैं कि आज के गीतों में आरंभ में या बीच में यानी पूरे गीत में कहीं न कहीं छोटा या बड़ा कोई न कोई संवाद जरूर होगा, है ना? तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। बताइएगा इस गाने में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं।
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
2: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
2: हो जाए खुल्लम।

वाह, हमारे श्रोता ने फटाफट जवाब भी दे दिया है कि ये है ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर्दे पर। फिल्म का नाम भी लिख दिया है आपने, खेल खेल में।

0: हमको जमाने से क्या, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं करेंगे हम दोनों।
1: जी तो अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले के थे। गुलशन बावरा की रचना थी, राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद ही वो खुशबू है जो रिश्ते के गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद है। आपकी इस मेहनत को दिल से सैल्यूट। और आप सभी सुनने वालों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से समझ में आ गया है कि धुनों को सुनते सुनते शायद आपको भी कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे पर तब वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज ही अपने अपनों से दिल की बात कहिए, दूरियों को मिटा दीजिए। शब्दों का ये पुल ही जिंदगी को महकाता है। जहां बात होती है वहीं प्यार सांस लेता है और जहां प्यार है वहां हर पल एक सुरीला नगमा बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद रिश्तों की वो डोर जो दिखाई नहीं देती मगर बांधे रखती है। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बात करते रहने से जीवित रहते हैं। कभी दो मीठे बोल मन की दूरी मिटा देते हैं तो कभी एक छोटी सी शिकायत रिश्ते में छिपी मोहब्बत को सामने ले आती है। संवाद बंद होते ही रिश्तों में खामोशी उतरने लगती है और खामोशी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनमें बात बनाकर रखिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी सांस लेते रहते हैं। आज सुरीला सफर में ऐसे गाने हो सकते हैं जिनमें प्रेम शिकायत पुकार सवाल जवाब मिलन विरह और अनकही बातों का संवाद होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। संवाद यानी बराबर बोलना और संवाद यानी बराबर सुनना भी। जिस बातचीत से वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो वही सही अर्थों में संवाद कहलाता है। आपसी रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने के लिए आपस में संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपसी रिश्तों में जो खटास या अबोलापन आ गया है उसका मुख्य कारण संवाद का न होना है। संवाद करते रहने से दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आप सभी के। जी तो हमारे श्रोता ने कहा कि आप हमेशा दो ही सवाल क्यों करती हैं, आप भी हमसे ज्यादा संवाद कीजिए ना इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम दो की जगह बहुत सारे सवाल आपसे कर लेते हैं। तो क्या पूछें बताइए आप, कैसा

0: ऐसा सवाल चाहते हैं आप लोग कि हम आपसे क्या सवाल करें। भाई हम तो जब आज कार्यक्रम संवाद पर लेकर आए हैं कि इन गानों के बीच में चाहे छोटा सा संवाद सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारा ध्यान जरूर खींचता है वो संवाद अपनी ओर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में या आपके लिए संवाद का असली अर्थ क्या है, सिर्फ बात करना या एक दूसरे को समझना। बताइएगा कि आप जब किसी से संवाद करते हैं, घर परिवार, रिश्ते नाते, कहीं भी, तो क्या अर्थ होता है उसका? किसी को समझने के लिए संवाद करते हैं या सिर्फ आपका उद्देश्य एक बात किए रखना कि हाँ हमारी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई विचार आपके दिलो दिमाग में रहता है? क्या रहता है किसी संवाद जब आप किसी से संवाद करते हैं तो? इसका जवाब कम से कम शब्दों में आपको देना है। ज्यादा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। बताइएगा कौन अभिनेता किस अभिनेत्री से ये बात कह रहे हैं?
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत कर

तो आप बताइएगा कि पर्दे पर कौन से अभिनेता ये गीत गा रहे थे और किस अभिनेत्री को ये बात कह रहे थे। आपके लिए बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ आज मैं, है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप संवाद विषय के साथ हम सभी के साथ संवाद करने वाली हैं, अच्छी बात है। संवाद सिर्फ बोलकर ही नहीं लिखकर भी किया जा सकता है, जो हम सभी इस

इस पर अभी कर रही हैं। संवाद मतलब संवाद यानी समतोल बातचीत, जो बात मुंह के तराजू से तौली जाती है। अच्छा, और तोल मोल से बोलने पर या संवाद करने पर कोई बिखराव की स्थिति भी नहीं होती, जिसके कारण आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। संवाद रूपी डोर हमें दिखाई नहीं देती, मगर एक दूसरे से बांध जरूर देती है, फिर वो घर परिवार हो या मित्र मंडली। जिंदगी सेहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार भरे संवाद में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं एक श्रोता लिख दें कि आज आपकी आवाज अच्छा हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ सुरीला सफर के इस यात्रा पर निकल जाए, तो आप भी निकल पड़े है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम संवाद से सजने वाली है, संवाद जीवन का वो सबसे सुंदर जरिया है आपसी संबंधों को बनाए रखने का, पर आज के इस युग में संवाद की जगह केवल व्हाट्सएप ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी है, पर फिर भी फोन पर अथवा सामने वाले बातचीत करते हैं उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें हमें प्रेम आत्मीयता और अपनापन का एहसास होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि संबंधों की सबलता में संवाद सदैव सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सामयिक हो या सर्वकालिक संपर्क सूत्र ही सामाजिकता का सुदृढ़ स्तंभ है। सकारात्मक और सृजनशील संवाद समय सापेक्ष है मगर सुखांत होते हैं। सीमित संसाधनों में भी सर्वमान्य सिद्धांत संवाद ही है। अति आशा की अपेक्षा संवादों में विवाद की जड़ है। समस्या समाधान का एकमात्र विकल्प संवाद है, विवाद नहीं। संबंधों को संबोधित करती हुई सुरीला सफर का यह कार्यक्रम हमें आज बेहद अच्छा लगेगा, ऐसा आपने मेरी तारीफ में फिर दो पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूं। और वही इक्षोता लिखते हैं कि मेरा प्रणाम है, आज की इबारत रिश्तों को संवाद के जरिए जोड़ने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। वही इक्षोता लिखते हैं कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान या समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूसी या फिर आने वाली सुखद कल्पनाओं की जिसे साकार रूप में देखना है, ये सभी बातें जीवन को साकार करते संवाद ही है, जो हर रूप में ढलकर बातों को सजीव करते हैं और यही बातचीत जीवन का मजबूत स्तंभ है। एक दूसरे से परिवार में, आसपास, समाज में, दीन दुनिया में सकारात्मक संवाद हम सभी को जोड़कर रखता है और हमें ये संवाद बनाए रखना चाहिए। जी तो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, अभी हमें देखने पर पता चलेगा कि क्या आपने सोचा है कि संवाद हम किसी से बात करने को लेते हैं या किसी को समझना भी संवाद का एक तरीका होता है। तो बताइएगा आप अपने जीवन में जब संवाद करते हैं और सामने वाले से जब संवाद सुनते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का संवाद हम एक दूसरे से किया करें। बताइएगा अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से किस तरह के संवाद आपके होते हैं। एक माता पिता किस तरह का संवाद अपने बच्चों से करता है और करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनते हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम यादों की बारात। इनका साथ दे रही हैं आशा भोसले।

जी, हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूं रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना ताकि हम एक पल के लिए ठहरे, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ सोचे कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना। और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

0: माल से, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी भी सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हाँ, हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है। हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनोहार है और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती है ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बदकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने जरूरत से ज्यादा किसी को गलत कह दिया है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए, बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बढ़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी

पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते ही राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं फेर रही, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुरमी, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो,

0: शर्म खा गया।
1: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
2: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूं शीतल होए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज। फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरि का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात

सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों, कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो

बहुत था लेकिन वहां संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है, है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो इस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं, संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जीनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ है आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज पसंद है, मुझे भी, तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे इतना प्यार इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा है, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखती है कि मेरी मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे, एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया, मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही है, तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्म पत्नी के साथ और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।

ना देख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत। ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने न कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए, और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सावरिया तक पहुंचा दो ना।

किसी दूसरे से खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती हैं कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहाँ कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहा। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो।

आज के इस युग में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला, डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि इसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया और खत उस डोर की पतंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के

0: डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृहमंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी।

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशा कोशिकारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानेसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजी आशा भोसले और चितलकर की। शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी श्री रामचंद्र की है।

दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते। मोहब्बत जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे दाज गाड़ी के इंजन की कसम,

0: मन तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार।
1: अरे अरे अरे अरे अरे दीवाने अबे मरेगा
0: नहीं डरेगा नहीं डरेगा, हम तो जाने प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा।

0: सक तो रोको हमको, रुक सक तो रोको हमको, हम तो नैना चार करेगा
1: नहीं डरेगा,
0: नहीं डरेगा हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा प्यार करेगा हम तो जाने, हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा प्यार करेगा।

का नहीं डरेगा, हमको जानी प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा, हमको जानी प्यार करेगा, प्यार करेगा।

0: मानो या न मानो हम तो, मानो या न मानो हम तो तुम्हें गले का हार करेगा,
1: नहीं करेगा,
0: नहीं करेगा हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा हम तो जाने, हम तो जाने ही प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा हम तो जाने। हाय हाय हाय हाय रे।
2: कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और लीजिए अब सुनिए ए आर कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलमारा।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
4: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है अफसोस।

0: ही नजर आए।
1: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहां
2: बस ऐसे ही जैसे
1: भी। अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसलिए बोल तो रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल

0: हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है, तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
1: बिल्कुल, और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी, क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ रही है। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा,
0: और ये कहा जाता है ना, जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी, जितनी गहरी होगी
1: जी,
0: सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आज का हमारा विषय भी यही है, सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
0: बिल्कुल,
1: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जिवामे की संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे, और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना, तो इसके बारे में बात किया जाएगा, और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने, यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें, और मेला देखने कब गए, क्या खरीदा, क्या देखा, वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे, चार चार लाइनों में, पांच पांच लाइनों में, तो मजा आएगा।
0: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं, घोड़े बेचकर सोना, घोड़ा है, जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े, मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना, और वो ढेर सारे खरीद के ले आते थे, और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी, तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
1: बिल्कुल,
0: और वो दिवाली पर खासतौर से
1: दिवाली
0: प्रसाद के
1: खिलौने मिट्टी के,
0: हाँ, चढ़ाए जाते
1: थे, खिलौने आते थे,
0: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे, कि वो चक्री होती थी और जात, छोटे छोटे चिमटे, बेलन,
1: रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
0: मिट्टी के
1: भी बिकते थे,
0: और बाद में चीनी मिट्टी के,
1: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे, गुलाबी, सफेद पे गुलाबी, हरा, ऐसे लाइन करके।
0: आप कौन सा रंग खरीदती थी?
1: जो वहां पे मिल जाते थे, गुलाबी हरा, इसलिए क्योंकि वही खरीदी,
0: जाहिर सी बात है,
1: जो रंग बोला है वही
0: पसंदीदा रंग होता है, उसी को हम जाके चुनते थे, और कई बार रंग, उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे, और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे, हर चीज मिल जाती थी।
1: बिल्कुल,
0: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है,
1: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं, ताजी हो जाएंगी सबके, आज जब बातें करेंगे, है ना।
0: और मेले में और भी तो कुछ होता था, हाँ? वो तो हिंडोला,
1: हाँ,
0: झूला होता था,
1: तरह तरह के झूले होते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता,
0: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का, माता पिता
1: जाने का, फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढूंढाई मस्ती थी कि कौन का, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेला जाना, तो
0: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई, अभी हम कहीं खो न जाए, गुम न जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है, सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है, उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें, और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस, या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
1: जो नावे आंगन टेढ़ा, हाँ, बहुत सारे हैं, तो
0: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात किया करती थी, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: किन्हें कितने मुहावरे याद हैं, लिख भेजे हमें,
1: क्या
0: और अब हम क्या करें बताइए।
1: हम तो गीत सुनते हैं,
0: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूं। क्या बात है, अभी यहां सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा

0: मौसम है तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई।
1: बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
0: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही।
1: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
0: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहां से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
1: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खासतौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
0: अंतराल लिया जाए,
1: लेते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है,

0: जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ न कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
1: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें

धोखा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा की उसमें चली जाती है, तो वो ये सुनकर के बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ न कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहां पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहां पर देखने को मिल जाती है। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहां से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयां, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहां बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई है। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव है, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था
1: जी।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बायोस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला,
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी, बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी,

0: उनका पर्दे लगा करके वो चांद तारा है और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रखी है उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोगों ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचा रहे जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं वो भी हम लोग खरीदते थे क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें और वहां पर डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा चढ़ रहा उतर रहा है पर्ची निकाल रहा है
1: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा अलग ही होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और

0: नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देखकर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे। बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गांव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूं। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं, अभी भी मेले लगते हैं। अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं वहां पर। बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं और तरह तरह की, जैसे आपने चूड़ियां,
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्रदराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहां झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूं तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है, वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूं। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है, मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं।
0: तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: मुख्यमंत्री जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है, कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चयन के विकल्प

0: कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जिवावे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जिवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों न हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: भीगे प्यारे प्यारे हैं नजारे, बारिश के मौसम में नजारे का आनंद कुछ अलग ही होता है। और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है, और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना,
1: घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं नाचना आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती
0: हो, गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहां बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आए कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथ ही लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी है। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहते हैं कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहते हैं कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें,
0: ऐसी नींद भी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि

0: कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो ये फिर से सो जाए।
1: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठने ही नहीं।
0: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह, मतलब पता चला वो 3 बजे सो रहे हैं।
1: अब उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: देखते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: गाना,
2: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में ही मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज। एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
2: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब

0: वो बड़े बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वॉन्टेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वॉन्टेड अ सिंगर, तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
0: ही और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके। আমি লাস্যময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: ক্যা সুন্দর তো বোল হ্যাঁ, মতলব অদ্ভুত, ক্যা লাইন হো, কামনা কে ফুল, ক্যা বাত হ্যাঁ, ক্যা বাত হ্যাঁ, সুন্দর। তো ইস ফিল্ম মে বহুত নাম দিয়া,
0: হ্যাঁ,
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ गए और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस,
0: बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो, हाँ, ना
0: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये
1: तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो वाँ, वाँ, पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye dheere dheere ye part of life ban gayi.
1: Bilkul bilkul, lekin ye jo
0: this is the beginning, yeah,
1: yes, bilkul, lekin iske baad international films aur unme awards lene aur tareef paane ka silsila lagatar chalta raha
0: ji,
1: to iske baad kaun si film aayi?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड, फिर कुछ दिन कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं।
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ, बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके, फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली।

0: ये भी था,
1: ये भी था,
0: हाँ, प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: क्या फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता है यहां। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस,
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज्ड टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया।
0: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेठ और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: इट वॉज
0: फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिकलेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहां काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वाज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहां थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई।
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म थी।
1: या जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ, हाँ। फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूरजहां

0: के गाने जो है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
0: बिल्कुल
1: वो भी सुना जा सकता
0: है। वो भी हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो। क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर है वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता।

0: एक सील ठप्पा एक टाइप कास्ट वाला मामला,
1: बट ऐसा नहीं होता है. यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने
0: मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना चाहिए.
1: यस, और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन इनिशियली.
0: अरे वाह,
1: यस,
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था.
1: हाँ
0: वाह,
1: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो
0: एक शानदार फिल्म.
1: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें.
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई एंड वी हैड like a very very interesting time, you know, shooting this together, bonding, and हमने साथ में बनाई इस फिल्म को. you know, we all got together and made the film. Russell Carpenter, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, he's a cinematographer of Avatars and Titanic, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों he shot the film. और ये असीम बजाज की वजह से है.
0: wow,
1: who's our producer. और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए.
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
0: और फिल्म बात भी बड़ी करती है.
1: हाँ,
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची.
1: यस, यानी लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
0: Wow.
1: You know, so it was really fantastic and also working with such amazing actors. सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
0: बिल्कुल सही है. जोरम के बारे में बात कीजिए क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है.
1: हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
0: वाह,
1: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट.
0: बिल्कुल,
1: जो
0: अपनी तरह की फिल्में करनी है
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वांट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ.
0: वाह,
1: दैट्स ऑल.
0: क्या बात है. और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह.
1: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है.
0: बिल्कुल,
1: यू नो ही सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
0: बिल्कुल, तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
1: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
0: हाँ बिल्कुल, पीछे
1: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
0: अच्छा,
1: थी वो और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
0: अच्छा,
1: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
0: Right.
1: So he said, okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और फिल्म के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come.

0: And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: Kya baat hai.
0: Then उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा बाई,
1: वो भी उनके साथ ही, बिल्कुल साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी, हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेचा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया. एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: यस,
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है. एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्म.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस,
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
0: जी जी जी जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है. और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर, एवरीबॉडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय, विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड एनी वे. सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. So it's a personal film for all of us, Angry Indian Goddesses.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला.
0: yeah.
1: उसका काफी नाम हुआ.
0: yeah.
1: उस फिल्म का. यहाँ भी एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे. मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है.
1: वाह.
0: उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है.
0: हाँ.
1: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था.
1: तब से गाते. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब व्हाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वाज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट randomly gone to my gynecologist to do some checkups. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है

0: कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज. सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है.
1: बिल्कुल.
0: यू नो एंड इट वॉज अनरियल. और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
1: द सेम थिंग.
0: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML. So I didn't know how would I tell my

0: didn't know how would I tell my mother.
1: Oh God.
0: तो मैं reports जो है हर दिन एक positive report निकलता था. मतलब आपके लिए वो negative है उस समय. कि हर every report is positive, every report is positive, ये भी positive है ये भी. तो मैं reports गाड़ी में रखती थी. और फिर ऊपर I had a 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, daughter and a mother who had lost her husband just like, you know, a year back, and I didn't know how to tell her. But obviously I had to tell her at some point. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वाज टॉकिंग टू दीज टू पीपल. मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है. मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर. इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, देर इज नोबडी एल्स. सो हाउ वुड आई डू दिस, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज अबनॉक्शियसली हाई. इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम.
1: क्यों?
0: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं, एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस.
1: आप जीती?
0: यस. बट द थिंग इज देयर आर टू मेनी बैटल्स, यू नो. इसमें मैं हील कैसे हूं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग, एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म,
1: वो तो रखा ही हुआ था.
0: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच्ड द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम, कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा.
1: बिल्कुल.
0: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन. वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? दैट्स वेन आई रीच्ड आउट. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया.
1: वो लोग कौन है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
1: इसलिए तो मैंने नाम पूछे है.
0: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है. दिस वॉज आर गर्ल गैंग. ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया, जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, यू नो, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं. और मतलब उसका तो मैं क्या कहूं कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
1: गजब.
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: जबकि 1.5 साल बीत चुका है.
0: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे. और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI. It is actually just the touch of a real human being which heals everything.
1: Right.
0: और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव

0: रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: था। ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था और मेरी बहन आई थी। मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट। और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए।
0: ये इशारे
1: पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल, जिस दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप। और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं,
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और that was the last evening। भाई एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा। अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहां हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
0: हाँ
1: सुनते हैं।

पीछे पीछे सपनों के भागे, तुम्हें देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सब।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना टेस्ट करवाना ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की ये गलती की मैंने क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं मुझे कुछ नहीं है मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूं। सो बट यू जस्ट नेवर नो ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस आपका अच्छा होता है लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम बट मैं ये मानती हूं कि आज मैं यहां पे हूं आपके साथ बातचीत कर रही हूं आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूं अपना प्ले कर रही हूं अपनी जिंदगी जी रही हूं अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूं। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो
1: और
2: हियर एंड नाउ कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है वी रियली डोंट नो। मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस

0: बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट, मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का, मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट, सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तहबे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त हियर एंड नाउ। मैं जो कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी, वहां हमारे अड्डे चलते थे, वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए। मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया properly,
0: yes,
1: कि yes I am going through this,
0: yes I lost a lot of weight, I mean that's a part of my life, I am an artist and I experienced it, I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences, और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तनिषा क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी, बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, फिल्म भी लिख रही हूँ प्ले भी लिख रही हूँ।
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है, अभी ब्रेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। हमने लिखा है हम एक्टिंग कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट।
1: ओके वाओ बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहां रिलैक्स भी हो जाते हैं, बेटी भी सीख रही है स्विमिंग सीख रही है, देन आई स्पेंड टाइम विद हर, खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ।
1: क्या बनाती
0: हूँ? हाँ मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा आजकल जो हो रहा है मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला, मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है मेरी वजह से, अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली आता है, इतना सुन चुकी है वो किस खाने में क्या विटामिन है क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी।
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ।
0: या
1: बिल्कुल,
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है, अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है वो मिनरल्स है और ये मिलेगा
1: पहले ही बोल देती है क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे।
0: बिल्कुल, और जाते जाते एक गाना
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के लिए, सफर फिल्म का ये गाना। इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हैं।

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ
0: जरूर जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंद

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।
1: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे ही आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, आज के सभा विशेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारी बहनें सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम नारी लोक। 6:15 पर आप सुनेंगी प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।

7 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी जीपी केंद्र से रिले किया जाएगा।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। रात्रि 9 बजे भी आप सुन सकते हैं।

जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई संपादित अंश आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि संगीत आप सुनेंगे 10:06 पर। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रात्रि 11:00।

एक नजर कल की प्रातकालीन सभा की तरफ। रामचरितमानस गान आप सुनेंगे 6:30 पर, खेती में बात 6:45 पर, लोक भजन का समय रहेगा 6:50 पर। साथ 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन में आप सुनेंगे वार्ता, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, वार्ताकार है भावना द्विवेदी।

देसी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर, राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर। समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8:00, 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 9:30 पर, सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर, 11:00 भी आप सुन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त किया।

ये आकाशवाणी वासुड़ा का माही चैनल है। 5:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारी बहनें उनको अपना कार्यक्रम नारी लोक।

0: बादल लाए, बूंदे लाए, धरती ने फिर रंग सजाए, ठंडी हवा मन को भाए, बारिश खुशियों के गीत सुनाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को मेरे प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैडम, बारिश आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नए पेड़ पौधे विकसित होने लगते हैं, तो प्लांट लवर्स भी एक्टिव हो जाते हैं अपने पेड़ पौधों की साथ संभाल करने में। तो बहनों, हमारा आज का विषय है बरसात के मौसम में पौधारोपण, और इस विषय पर बात की है योगेश स्वर्णकार से, जो कि वर्तमान में पौधारोपण और इससे जुड़ी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बातचीत। बरसात का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है, मिट्टी में नमी होती है और वातावरण भी पौधों के लिए अनुकूल होता है। पौधारोपण का इससे बेहतर समय शायद ही कोई हो। जी हाँ बहनों, हमारा आज का विषय है बरसात के मौसम में पौधारोपण। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है योगेश स्वर्णकार, जो कि वर्तमान में पौधारोपण और उससे जुड़ी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार जी।
0: सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि बरसात का मौसम पौधारोपण के लिए क्यों अच्छा माना जाता है?
1: बरसात के मौसम में वातावरण के अंदर क्या नमी रहती है
0: जी,
1: धूप की कमी रहती है, मगर सुहावनी धूप हो जाती है, ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पौधे जो इसमें बढ़ते हैं और अपन जैसे कटिंग वगैरह लगाते हैं, तो ये बरसात का मौसम सबसे ज्यादा उपयुक्त है कटिंग और बीजारोपण दोनों के लिए
0: जी। और इस मौसम में हमें कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए?
1: वैसे बारिश के मौसम में अपन हर प्रकार का पौधा लगा सकते हैं, फिर भी गुड़हल, स्नेक प्लांट, गुलदाउदी, एरिका, मास रोज, गुलाब, पीस लिली, मनी प्लांट्स और चंपा, इनके कटिंग से भी लग जाते हैं, और अपने जो मामले नर्सरी से लेके आते हैं तो उन पौधों को भी अपन अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं।
0: जैसे कि आप कह रहे हैं कि नर्सरी से लाना है, तो पौधा खरीदते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी हम नर्सरी से पौधे खरीदें?
1: जब अपन नर्सरी से पौधा खरीदें तो एक तो पौधा छोटा होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए
0: जी।
1: ज्यादा बड़े पौधे के अंदर क्या है कि उसको लाकर

0: कि अपन जब घर पे गमले में लगाएंगे तो कभी कभी वो मर जाता है, उसका क्या वातावरण एकदम चेंज होता है ना
1: जी,
0: घर का वातावरण और नर्सरी का वातावरण दोनों में फर्क होता है। नर्सरी के वातावरण में नमी रहती है और अपन घर पर उतनी नमी प्रदान नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो नर्सरी से जब हम पौधा लेके आवे तो उसको एक या दो दिन के लिए पहले घर पे रख दो
1: जी,
0: अपने पौधों के साथ में। तो मेन चीज है कि पौधा स्वस्थ होना चाहिए
1: जी,
0: उसे और मल्टी ब्रांचेज होनी चाहिए
1: जी आपके अनुसार, मतलब स्वस्थ पौधा हो और विकसित हो, कहने का मतलब।
0: हाँ
1: अच्छा, अब इसी के साथ जैसे हम पौधा ले आए तो उसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए?
0: जब अपन पौधा लेके आते हैं तो पहले उसको एक या दो दिन तक अपने घर पर अपने दूसरे पौधों के पास में रखो, साथ में रखो। उसके बाद अपने जो पौधे लगाते हैं जैसे जहाँ पर भी अपन लगा रहे हैं गमले में या जमीन में
1: जी,
0: तो एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी का निकास हो, पानी ठहरना नहीं चाहिए
1: जी।
0: और जब अपन पौधा लगाते हैं तो उस समय विशेष रूप से जब अपन जैसे नर्सरी से लेके आते हैं तो या तो वह काली मिट्टी में होता है या लाल मिट्टी में होता है
1: जी,
0: तो वह थोड़ी ठोस होती है, तो उस पौधे की जो मिट्टी है उसको थोड़ी सी हटा दी जाए या उसको पानी छिड़क करके हल्का सा लूज कर दिया जाए, जड़ डिस्टर्ब ना हो, बस ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल करके गड्ढा भी उचित प्रकार का हो, जहाँ अपन लगा रहे हो गमला भी जैसे मान लो कम से कम 12 इंच 10 इंच से छोटा ना हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। उसमें जैविक खाद या गोबर की खाद अपन उसमें लगा सकते हैं। और विशेष रूप से जो अपने पॉलीबैग होता है जिसमें अपन नर्सरी से लेके आते हैं तो उसमें पॉलीबैग में आता है, तो पॉलीबैग को सही तरीके से काट करके अलग कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि पॉलीबैग को ही अपन गमले में रख दें तो फिर पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा
1: जी। अब जैसे पौधे लगाने के तरीका आपने बताया और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो इस समय हमें पानी देने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, कितनी होती है ये बताइए।
0: बारिश के मौसम में जैसे पानी की आवश्यकता कमी होती है, फिर भी जैसे मान लो कोई पौधा अपन ने शेडेड एरिया में रख रखा हो तो उसको देखा जाए कि उसको बाहर के मॉइस्चर तो बराबर है लेकिन उसे जड़ तक पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा 1 या 2 इंच उसको खोद करके उंगली से चेक कर लिया जाए कि मिट्टी यदि सूखी है तो उसमें जरूर थोड़ा सा पानी डाला जाए, मात्रा कम होनी चाहिए और पानी की निकासी बराबर होनी चाहिए, जो गमला वगैरह है उसमें छेद होना चाहिए नीचे, आवश्यकता अनुसार ही पानी डाला जाए।
1: मतलब पहले उसको देखना जरूरी है कि उसकी आवश्यकता है या नहीं, उसके अनुसार ही हमें पानी डालना।
0: हाँ, यदि कभी ज्यादा पानी डालेंगे तो उसकी जड़ सड़ जाएगी और फिर पौधा मर जाएगा।
1: अब अक्सर देखा गया है सर कि सब लोग पौधे तो लगाते हैं लेकिन कुछ समय बाद में वो पौधे दिखाई नहीं देते, वो मर जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: इसका कारण है तो सबसे पहले तो धूप की कमी। अधिकांश अपन क्या है कि पौधा लगाते हैं और यदि उसको धूप चाहिए, कोई सा ही पौधा हो चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो, इंडोर वाले पौधे को भी कम से कम इनडायरेक्ट धूप मिलना चाहिए
1: जी,
0: और जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनको तो बाहर का पूरी धूप चाहिए 5-6 घंटे की
1: जी,
0: और उनके एक समय के ऊपर प्रूनिंग होना चाहिए, कटिंग मतलब उनकी छटाई। जैसे गमला है उसमें सूखी पत्तियां वगैरह हो, उनके फूल वगैरह गिर जाते हैं, उनको साफ करते रहें, अनावश्यक पौधे उग जाते हैं मिट्टी के साथ जो आ जाते हैं तो उनको भी हटाना चाहिए, ज्यादा पानी अपन ना दें और केमिकल युक्त खाद जो होती है वह कम से कम यूज करें, जहां तक हो सके अपने को लिक्विड फर्टिलाइजर यदि मान लो काम में लेते हैं तो सबसे बढ़िया है।
1: अच्छा,
0: और लिक्विड फर्टिलाइजर अपने जो किचन में सामान जो निकलता है जैसे सब्जियां हैं, प्याज हैं, आलू हैं, इनके छिलके हैं, इनको एक ड्रम में डाल दिया जाए, पानी डाल करके 5-6 दिन बाद उसको छान करके 10 गुना पानी मिला करके लिक्विड अपन तैयार कर सकते हैं
1: जी,
0: और पौधों को डाल सकते हैं, यह सबसे बेस्ट है। इसमें कभी भी पौधे जलते नहीं, कोई साइड इफेक्ट पौधे को नहीं मिलता है, जबकि केमिकल वगैरह जो व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं या नेट पे देखते हैं जो उसके अंदर अपने केमिकल डीएपी वगैरह या पोटास नाइट्रोजन इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार मिलते हैं लेकिन वो कभी कभी नुकसान कर जाते हैं। डीएपी भी अपन डाल सकते हैं लेकिन उसको कब उसे पानी में घोल के डाल दोगे तो पौधे को कभी नुकसान नहीं होगा, डायरेक्ट डालने पर कभी पौधा जल सकता है।
1: अब जैसे कि पौधे लगाने की बात है तो जिन लोगों के पास जमीन है वो तो उसमें लगा लेते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है तो वो किस प्रकार से पौधारोपण करें?
0: उसके लिए एक तो गमला है, सीमेंट के भी मिलते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी काफी चल रहे हैं जो वजन में हल्के होते हैं, और यदि किसी के पास छत अवेलेबल है तो छत के ऊपर वो ईंटों के ऊपर कोई पत्थर रख करके क्यारी भी बना सकता है, आजकल ग्लोबैक्स भी काफी अवेलेबल है, सस्ते हैं और कम से कम 5-6 साल तक चल जाता है तो उसका भी यूज किया जा सकता है।
1: अब आपके अनुसार पौधारोपण करते हैं उस समय लोग क्या गलती करते हैं?
0: सबसे बड़ी गलती तो वही करते हैं कि एक तो पौधा जो नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं वो तुरंत उसको लगा देते हैं।

0: आज लाया, आज का आज लगा दिया, तो वो एकदम शोक में आ जाता है पौधा, क्योंकि वहां पर नमी का वातावरण होता है, अपने घर में वैसा वातावरण अपना नहीं होता है। दूसरा, आजकल जो जितने पौधे आते हैं उनमें एक बास्केट होती है छोटी सी, एक होता है पॉलीपैक में लगा हुआ, लेकिन उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी एक बास्केट होती है, तो उस बास्केट को बहुत सावधानी से अपने को हटाना पड़ता है
1: जी,
0: ताकि वो जड़ अपनी डिस्टर्ब ना हो, उसकी मेन जड़ है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यदि अपन बास्केट को नहीं हटाएंगे तो अपना पौधा जल्दी से ग्रो नहीं करेगा, वो वहीं पर ही उसकी जड़ें सिमट जाएगी। और बास्केट काटते समय पौधे की जड़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस ये जरूर ध्यान रखना है, उसकी मेन जड़ है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साइड की जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो तो फिर निकल जाती है नई नई।
1: अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि यदि अपन मान लो घर पर नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं और घर पर लगाते हैं, तो उसको आप यदि संभाल सकते हैं, आप उसको टाइम दे सकते हैं, उसके साथ लगाव पैदा कर सकते हैं, तो ही आप उसको लगाइए, वरना बेकार उस पौधे को वहां से ला करके घर पे रखें, वो मर जाए, उसके अपन केयर नहीं करें, तो फिर बड़ा दुख होता है और उस पौधे का जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसा ना करें, उसको फिर नर्सरी में ही रहने दें, भाई कम से कम जो प्लांट लवर है वो उसको ले जाएंगे और लगाएंगे, और आप यदि देखा देखी ना करें, जैसे मान लो किसी के यहाँ गए, वहां बहुत सुंदर देख करके अपने भी मन होगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, अपन लेकर के आ गए पौधे लगा दिए और फिर पानी डालना टाइम ही नहीं है सर। अब टाइम ही नहीं है तो फिर पौधे को तो जो खुराक चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए ना, और नहीं मिलेगी तो फिर पौधा मर जाएगा। तो यदि आप उसको संभाल सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, तो ही पौधा लगाइए, देखा देखी ना करें, और पौधे के साथ लगाव उत्पन्न करें। जब अपन छोटा पौधा लाते हैं और उसको बड़ा करते हैं तो उसके अंदर एक लगाव पैदा हो जाता है, बस वो होना चाहिए। तो आपका स्नेह भरा हाथ उसके ऊपर जब पौधे के ऊपर फिरेगा तो पौधा अपना आप सर्वाइव करेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो योगेश जी, आपने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो बहनों, आपने बरसात के मौसम में पौधारोपण पर योगेश स्वर्णकार जी से बात की, और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

फिर से स्वागत है बहनों आपका कार्यक्रम में। हमारा विषय है विश्व स्टील पेन दिवस। बहनों आज विश्व स्टील पेन दिवस मतलब कि 11 अगस्त को यह मनाया जाता है। यह एक अनोखा वाद्य यंत्र होता है। स्टील पेन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे स्टील से तैयार किया जाता है और इसे बजाने पर इससे बेहद मधुर संगीत निकलता है। इसकी शुरुआत कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबेगो में हुई और आज यह वहां की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व स्टील पेन दिवस हमें सिर्फ संगीत की याद ही नहीं दिलाता बल्कि यह भी बताता है कि रचनात्मकता और हुनर साधारण चीजों को भी खास बना सकते हैं। इसका संगीत लोगों को ऊर्जा और खुशी प्रदान करता है और उसकी लयात्मक धुनें लोगों को आकर्षित करती है। इस दिन को मनाने से स्टील पेन की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। अब हम चलते अगले विषय की ओर, घर घर तिरंगा अभियान, मेरा तिरंगा मेरी शान। मैंने आज बात उस ध्वज की जो सिर्फ तीन रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि हमारी आन बान और शान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। केसरिया हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है, सफेद शांति और सत्य का संदेश देता है, जबकि हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी गौरव और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान हमें अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर देता है। लेकिन याद रखिए, तिरंगे का सम्मान केवल इसे घर पर लगाने तक सीमित नहीं है। तिरंगे की शान तभी कायम रहेगी जब हम देश के कानूनों का सम्मान करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, स्वच्छता रखें, प्रकृति की रक्षा करें और देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाएं। मेरा तिरंगा मेरी पहचान, मेरा तिरंगा मेरी शान, देश के लिए कुछ कर दिखाना, यही है तिरंगे का सम्मान। आइए हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और अपने तिरंगे के प्रति सम्मान, प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को और भी मजबूत करें। तो यह तो थी चर्चा, फिर से चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

फिर से स्वागत है बहनों कार्यक्रम में। बारिश के मौसम में जंक फूड खाने से बचें। मैंने बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, चाट, गोलगप्पे, नूडल्स, मोमोज और न जाने क्या क्या जंक फूड खाने का मन करने लगता है। स्वाद तो लगता है लेकिन बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बारिश के मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव तेजी से पनपने लगते हैं। खुले में रखे खाद्य पदार्थ या बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में बने पकवान खाने से पेट दर्द, उल्टी दस्त और फूड इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए जंक फूड को कहे ना, अगर ये खाद्य पदार्थ आप घर में बनाकर खाएं तो आपका स्वास्थ्य खराब होने से बच जाएगा। इसके साथ ही घर का बना पोहा, उपमा, दाल चावल, खिचड़ी, सूप ले, फल सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोकर काम में लें। इस मौसम में पानी बहुत अच्छे से पिए और साफ पिए। बारिश का आनंद आप लेंगे ही, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। तो बारिश का पानी हो, हाथों में चाय की प्याली और गर्मा गर्म पकौड़े, तो कहने ही क्या। तो इसी के साथ समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो दीजिए अनुमति प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे याराना फिल्म से ये गाना, अनजान के बोल और संगीत राजेश रोशन का। कार्यक्रम का अगला गीत

कार्यक्रम का अगला गीत रक्षक फिल्म से। अभिजीत की आवाज, दीपक चौधरी के बोल और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: कुमार सानू की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना टक्कर फिल्म से माया गोविंद के बोल, संगीत अनु मलिक का।

तुमको ना भूल पाएंगे। इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत। आइए अब सुनते हैं घर फिल्म से ये गाना, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तराने नए पुराने का अगला अंक सुनिए समाचार के बाद। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार।

आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली

0: में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं कृष्णा फिल्म से। आनंद राज आनंद के बोल, अनु मलिक का संगीत।

कृष्णा फिल्म से आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना गैम्बलर फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

अगला गाना सुनिए कटी पतंग फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन।

ये आकाशवाणी बांसुड़ा का माही चैनल है, एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:15 हुए हैं। आप सुनेंगे प्रायोजक कार्यक्रम हमारी बेड़िया।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
0: जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए
1: 9414066730।

दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें, और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं, कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए, तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखें, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है, और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है

शारीरिक शोषण या चाइल्ड अब्यूज इसके शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं। कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाए, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है और वहां से एक घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो माता पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित

महसूस करेंगे। और दोस्तों बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगी कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
0: जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए
1: 9414066730।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: निवेश करनी चाहिए। प्रदेश में डिग्गी, फार्म पॉन्ड और जल संचयन संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, 27 जिलों के लिए कल बरसात का येलो अलर्ट। और राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने की शिकायत मिलने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए अवमानना की चेतावनी दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय भी लागू किए थे। मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा बना हुआ है। इससे सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े रहे। श्री बिरला ने कहा कि गृहमंत्री इस विषय पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से हंगामा नहीं करने और सदन चलाने में सहयोग की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधा कृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, किंतु विपक्ष के शोर शराबे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में आज अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। जीआई उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उनके गुणवत्ता मानकीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक समझौता किया है। इसके तहत देश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के व्यवसायीकरण और दुनिया भर की बाजारों तक उन्हें पहुंचाने के काम को रफ्तार दी जाएगी। इसके लिए डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देकर एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में डिग्गी, फार्म पॉन्ड और अन्य जल संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। कृषि विभाग ने डूबने के हादसों की रोकथाम और जन तथा पशुधन की सुरक्षा के व्यापक उपाय करने को कहा है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में हर डिग्गी, फार्म पॉन्ड और जल संरचना के चारों कोनों पर खूंटों सहित मजबूत रस्सी बांधने को कहा है। इसका एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा ताकि पानी में गिरने की स्थिति में कोई व्यक्ति इस रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकल सकेगा। साथ ही हर जल संरचना में पुरानी ट्यूब लाइफ सेविंग फ्लॉट के रूप में उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नई बनने वाली जल संचयन संरचनाओं में भी निर्धारित सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे। इनकी अनुपालना के बिना किसी योजना में कोई अनुदान और वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: हमारी बेड़िया अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयप्रज में केंद्र से।
1: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत FIR दर्ज

प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला फिलहाल बना रहेगा। कल 27 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। हालांकि 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। टोंक के टोडा राइजिंग में

0: बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। टोंक के टोडा राइजिंग में आज झमाझम पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अच्छी बरसात हुई। वहीं कल बारा, झालावाड़, कोटा और नागौर में जोरदार बारिश हुई। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि काली सिंध और परवन नदियां उफान पर है। हाड़ौती अंचल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: काली सिंध, परवन और चंबल नदियां उफान पर हैं। जलभराव के चलते नौनेरा बैराज के 19 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा सवाई माधोपुर मार्ग पर झरेल पुलिया पर 6 फीट तो रोटेदा पुलिया पर 2 फीट पानी बहने से कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंद्रा टनल में पानी भरने से रफ्तार थम सी गई है। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: डीडवाना कुचामन के नावा में भी भारी बरसात हुई। तेज बारिश से कई स्थानों पर दुकानों और घरों में पानी भर गया। और ब्यौरा हमारे नागौर संवाददाता से।
2: नवा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार रात को करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया। तेज बारिश से बालिका स्कूल चौराहे पर भारी जलभराव हो गया। वार्ड संख्या 6 में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित रहा। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अब तक 7 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है। 18 जिलों में सामान्य और 16 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। वहीं छोटे बड़े 693 बांधों में से 451 आंशिक रूप से भरे हैं और 22 बांध लबालब हैं। प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है। साल 2024 की तुलना में इस साल अब तक कुल अपराधों में लगभग 17% और संपत्ति संबंधी अपराधों में 32% से ज्यादा की कमी आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आज जयपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने और तय समय सीमा में इनकी जांच पूरी करने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने की बात कही। नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे लक्ष्मण रेखा अभियान की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने नार्को सेल को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जल्दी ही नेक्स्ट जेन ई चालान प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही विभाग ने तबादला सूची जारी कर दी है। विभिन्न जिलों में उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों का दायित्व दूसरे अधिकारियों को सौंपा गया है। महावीर खवाड़ी, योगेश कुमार श्रीवास्तव, नरेश बुनकर और डॉ अशोक कुमार को जयपुर में स्थानीय निकाय विभाग में लगाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट की जयपुर पीठ में 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से आज उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई। सरकार ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अंतर सिंह मेहरा और वीरेंद्र सिंह बागावत को रेट की जयपुर पीठ में सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं अधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, इसे जल्द पूरा किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत समूचा प्रदेश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। अभियान में अब तक 21 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। 9 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में 12,000 से ज्यादा प्रभात फेरियां निकाली गईं और 12,000 ही वाहन रैलियां निकाली गईं। हर घर तिरंगा पोर्टल पर 40,000 से ज्यादा सेल्फी अपलोड की जा चुकी है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से लोगों में राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना का संचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नागौर, कोटपुतली और बारा में तिरंगा प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। उधर चूरू और बाड़मेर में भी विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई गतिविधियां रखी जा रही हैं। राज्य निर्वाचन

0: आयुक्त राजेश्वर सिंह ने युवा मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने के लिए एआईसी गतिविधियां तेज करने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने आज प्रदेशभर के निर्वाचन साक्षरता क्लब एआईसी अधिकारियों और कॉलेज प्राचार्यों के साथ वीसी से संवाद किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रदेश में डिग्गी, फॉर्म पॉन्ड और जल संचयन संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, 27 जिलों के लिए कल बरसात का येलो अलर्ट। और राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में अगस्त माह की शुरुआत के साथ प्रशासनिक गतिविधियों, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति से जुड़े अभियानों के साथ मॉनसून और त्योहारों की हलचल भी दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी काम चल रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले 9 तारीख से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने अधिकारियों को तिरंगा प्रभात फेरी, रैली, प्रदर्शनी, तिरंगा कैनवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजावट जैसी गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन, कैंडल मार्च और विभाजन प्रभावित परिवारों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 1746 नवचयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट दी गई। अधिकारियों ने युवाओं से सरकारी अवसरों का लाभ उठाने और सेवा में ईमानदारी तथा संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की। अंगदान संकल्प अभियान में हनुमानगढ़ जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 22 जुलाई तक जिले में 12,828 नागरिक अंगदान का संकल्प ले चुके थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अधिक अंगदान शपथ लेने की अपील की है। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेफ सिटी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया। नागरिकों से सूचनाएं साझा करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करने की भी जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत भी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। महिलाओं को छेड़छाड़, उत्पीड़न या सुरक्षा से जुड़ी समस्या होने पर पुलिस सहायता लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में नशा मुक्ति को लेकर हर ग्राम पंचायत में मनस्वी समितियों का गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से खेल प्रतियोगिताएं, योग शिविर, नशा मुक्ति की शपथ, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता और जनसंवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन युवाओं को नशे से दूर रहने की लगातार अपील कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 26 जनवरी 2025 से अब तक 23,957 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। वहीं गिवअप अभियान के तहत 1,78,000 से अधिक लोगों को योजना से हटाया गया है। प्रशासन के अनुसार इससे पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 54,10,00,000 रुपए की लागत से 65 नई सड़कों का निर्माण होगा। इनकी कुल लंबाई 174 किलोमीटर 750 मीटर है। भादरा, हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा और संगरिया क्षेत्रों में मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य किए जाएंगे। इससे गांवों और कस्बों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सकों ने जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने और 6 माह तक नवजात को केवल माँ का दूध देने पर जोर दिया। इसके बाद पूरक आहार के साथ 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी गई। हाल ही में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हनुमान

0: किशनगढ़, मक्कासर और गोलूवाला क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जलभराव भी हुआ। हालांकि इस बारिश से धान उत्पादक किसानों को फायदा हुआ है। जिले में इस मानसून अपेक्षाकृत बारिश कम रही है, लेकिन किसानों को आगे अच्छी बारिश की उम्मीद है। सावन माह के चलते जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। सावन के दोनों सोमवार को लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिरों में भजन और जयकारों का सिलसिला चलता रहा। इस बीच बाजारों में त्योहारों को लेकर गतिविधियां बढ़ गई हैं। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट साफ किनी रे गम जावण री सूरत में पुलिस ने उम्र और लिंग रो भेद करिया बगैर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रदेश में डिग्गी फार्म पॉन्ड और पानी भिड़ोकरण री संरचनावां में हिफाजत रा जतन जरूरी फैला। राज्य रा उगनी और लंकाऊ उगनी हलका में कठे कठे जोरदार मेह परछियो। 27 जिला सारू काल बरसात रो येलो अलर्ट और राज्य सरकार 183 आरएएस अहलकारा रा तबादला कीना। समाचार संगे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट साफ किनो है कि किनी रे गम जावण री शिकायत मिलन पर पुलिस ने उम्र और लिंग भेद करिया बगैर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन रिपीट इनकी पालना नहीं करने वाला राज्य रा मुख्य सचिव और पुलिस रा मुखिया ने खुद पेश फेवन रो हुक्म देता थका अदालत रो हुक्म नहीं मानन रा आरोप री चेतावनी दीनी है। मामला री आगनी सुनवाई 5 अक्टूबर ने फैला। इनो पहली सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने गम्योड़ा लोगों रा सगड़ा मामला माए बिना शुरुआती जांच तुरंत एफआईआर दर्ज करन रा हुक्म दीना है। अदालत गम्योड़ा बच्चा ने हेरबा और वारी हिफाजत सारूई उपाय लागू की ना है। संसद रा पावत सत्र रे दौरान हाल ताई दोनों सदना री कार्रवाई माए विपक्ष रा हंगामा रे कारण अड़चन आ रही है। विद्यार्थियों का नि लाड़ला दिना करी जिया विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित करड़ी कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्षरा सदस्य लगातार हंगामो कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज प्रश्नकाल शुरू करन री कोशिश कीनी पर विपक्षरा सदस्य विद्यार्थियों रा प्रदर्शन रा मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग करता रहा। श्री बिरला कहो के गृह मंत्री ई मुद्दा माथे सदन में जवाब देवन सारू तैयार है। वे विपक्ष रा सदस्यों सदन री कार्रवाई चलावन माई मदद री अरज कीनी।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार
1: आ
2: रहे हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में ऐड़ा ही हालात रहा। सभापति सीपी राधाकृष्णन शून्य काल शुरू कीनो पर विपक्ष रा शोर शराबा रा कारण सदन री कार्रवाई दोपहर पाछे 2 बजे ताई टाल दे री जी। इ बीच राज्यसभा में आज अधिकरण सुधार बिल 2026 पास करती उच्चियो। लोकसभा ओ बिल पहली ही पास करती न हो। विधि न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ओ बिल पेश कीनो। इनरो मकसद न्यारा न्यारा अधिकरणा रा अध्यक्षा और सदस्या री योग्यता नियुक्ति और प्रशासन और काम करण रा तरीका माय दक्षता सुधार स्वतंत्रता साफ गोई और एक रूपता तय करनु है। बिल माय राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनावन रोई प्रस्ताव है। जीआई टैग वाला सामान री दुनिया माय बिक्री बधावन सारू सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन महकमा सागे करार कीनो है। इनते देश रा जीआई टैग वाला सामान ने दुनिया भर रा बाजारा ताई पोगावन ने बधावो दियो चावेला। इसारू

0: एक जिला एक उत्पाद जुड़िया तंत्र ने मजबूत बनायो जावेला। प्रदेश माए डिग्गी फार्म पॉन्ड और पानी भेड़ो करण रा दूजा साधना माए हिफाजत रा जतन जरूरी फैला। कृषि विभाग डूबण रा हादसा नी रोकथाम और मिनखा और ढंडा ढोना री हिफाजत रा उपाय करण सारू कहो है। महकमो सगला संबंधित अहलकारा ने हर डिग्गी फार्म पॉन्ड और जल संरचना रा चार ही खूणा मत खूंटा गार्ड और मजबूत जेवड़ी बांध नु तय करण सारू कहो है। इनरो एक सिरो पानी माए छोड़ दियो जावेला ताकि पानी माए पड़ जावन रे सूरत माए ई रस्सी रे सहारे बाहर निकले जा सके। ईसा गई पानी भेड़ो करण रे हर जुगत कने जूना ट्यूब राखना जरूरी फैला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। कोटा अजमेर उदयपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए आज घनी जोरदार बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग काल राज्य रा 27 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। हालांकि 13 अगस्त तो तेज बरसात माए कमी री संभावना है। ई बीच काल 12 झालावाड़ कोटा और नागौर माए जोरदार में बरसियो। माना कोटा खबर नवीस बतायो कि काली सिंध और परवन नदियां उफन रही है और हड़ौती अंचल में फेरी झमाझम बिरखाऊ जिंदगी माथे असर पड़ियो है।
1: काली सिंध परवन और चंबल नदियां उफान पर हैं। जल भराव के चलते नौनेरा बिराज के 19 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा सवाई माधोपुर मार्ग पर झरेल पुलिया पर 6 फीट तो रोटेदा पुलिया पर 2 फीट पानी बहने से कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मुकुंद्रा टनल में पानी भरने से रफ्तार थम सी गई है। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। आशीष मेहता आकाशवाणी समाचार कोटा।
0: नागौर जिला में आई चोखी बिरखा भी है वठा तेज बारिश के ठोड़ा मकाना दुकाना माए पानी भर गयो। और जानकारी महा खबर नवीस
2: नवा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार रात को करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया। तेज बारिश से बालिका स्कूल चौराहे पर भारी जल भराव हो गया। वार्ड संख्या 6 में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित रहा। श्यामलाल आकाशवाणी समाचार नागौर।
0: प्रदेश में साल 2024 की तुलना में इन साल हाल तई अपराधों की तादाद माए करीब 17%, जबकि संपत्ति जुड़िया अपराधा माए 32% बत्ती कमी आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राखी जी मीटिंग माए आज जानकारी दीनी। वह अहलकारा ने अपराधियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म दीना। श्री शर्मा साइबर अपराधा माथे लगाम लगावन सारू 32 शंका वाला हलका की पिछाण करण और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क रे खिलाफ मिलजुल कार्रवाई करण सारू ही कहो। नशारी रोकथाम सारू चलाया जा रहा लक्ष्मण रेखा अभियान रो जिक्र करता थका डीजीपी नार्को सेल ने और सक्रिय बनावन रा हुक्म दीना। वह कहो कि आवन जावन री व्यवस्था ने और बेहतर बनावन सारू नेक्स्ट जेन ई चालान प्रणाली लागू करण रे तैयारी करी जा रही है। राज्य में 183 आरएएस अहलकारों रा तबादला कर दिया गया है। आवता दिनों होवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव न ध्यान रखता थका अहलकारों ने तुरंत नवी जिम्मेदारी संभाल बारा हुक्म दिया गया है। चुनाव सारू आदर्श आचार संहिता लागू होवन पहली तबादला सूची जारी करती रही है। न्यारा न्यारा जिला माए उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायक कलेक्टर और दूजा खास प्रशासनिक ओहदा ने जिम्मेदारी नुआ अहलकारा ने सौंपी है। महावीर खराड़ी योगेश कुमार श्रीवास्तव नरेश बुनकर और डॉक्टर अशोक कुमार ने जयपुर राजस्थानीय निकाय विभाग में तैनात करी चिया है। राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट री जयपुर पीठ माए 2 सदस्यों री नियुक्ति की नी है। सरकार री ओर आज राजस्थान हाई कोर्ट ने आ जानकारी दी री ची। सरकार अदालत ने बतायो कि रिटायर हुआ प्रशासनिक अहलकार अंतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह बांकावत ने रेट री जयपुर पीठ माए सदस्य बनाई चिया है। अदालत ने बताई चियो कि रेट रा चेयरमैन री नियुक्ति री प्रक्रिया बेगी पूरी कर ली जावेला।

0: हर घर तिरंगा अभियान रा तहत आखा राज्य में हाल ताई 21,32,000 लोगों ने भागीदारी रही है। 9 अगस्त तो शुरू करी जिया ई अभियान रा तहत हाल ताई 12,032 प्रभात फेरियां और 12,000 वाहन रैलियां निकाली ची। ईसा गई हर घर तिरंगा पोर्टल माथे 40,032 सेल्फी अपलोड करी जा चुकी है। 17 अगस्त ताई चलन वाला ई अभियान रे जरिए लोगा माए तिरंगा झंडा रा मान और देशभक्ति री भावना जगाई जा रही है। आज कोटपुतली और बारा माए तिरंगा प्रदर्शनी और मेला लगाई जिया। चूरू और बाड़मेर माई हर घर तिरंगा अभियान रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। राज्य रा निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह वोट देवन लायक नौजवानों में चुनाव में जुड़ी साक्षरता बढ़ावन माथे जोर दिनो है। वे आज राज्य रा निर्वाचन साक्षरता क्लब ईएलसी अहंकारा और कॉलेज रा प्राचार्य सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत रे दौरान बोल रहा है। इस दौरान नौजवानों में वोट देवन बाबत जाग जगावन और कॉलेज लेवल माथे इनु जुड़िया कार्यक्रम ने असरदार बनावन रे बारे में चर्चा करी जी। वे प्राचार्य ने कॉलेज में ईएलसी ने लोकतंत्र री प्रयोगशाला बनावन बाबत कहो। काल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनायो जावेला संयुक्त राष्ट्र संघ इनरो ई साल रो मुद्दो विभिन्न संदर्भ समान आकांक्षाएं रखियो है। वो दुनिया भर रा नौजवानों रा हालात न्यारा अभिवन पनाई मान मौका और आवता बगतरी उम्मीदा एक सरीखी अभिवन मथ जोर दे वह है। इस सिलसिला में राज्य में आज विशेष किशोर स्वास्थ्य अभियान शुरू करी चियो। 13 अगस्त तक चलन वाला ई अभियान रा तहत पाली और हनुमानगढ़ रे सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों रा स्वास्थ्य री जांच करी ची। इस आगे विद्यार्थियों में जाग जगावन सारू भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला में हाल ताई 20,32,000 आभा आईडी बना दी रिची है। ई काम में सरकारी अस्पताल सागे गैर सरकारी अस्पताल ही जुड़ गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला बतायो के अस्पताल में पर्ची री खिड़की कन क्यूआर कोड लगार ई सारू नाम मनावनो आसान बनाई चियो है। जैसलमेर रा सरकारी अस्पताल में मरीजा और वाना परिवार वाला ने ओपीडी पर्ची बनावन में मदद सारू ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन और डिजिटल टोकन रो सुबितो मुहैया करायो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला। इसारू आप ही 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको हो। आखिर में खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट साफ कीनो किनी ने गमजावन री सूरत में पुलिस ने उम्र और लिंग रो भेद करिया बगैर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रदेश में डिग्गी फार्म पॉन्ड और पानी भेड़ो करण री संरचना में हिफाजत रा जतन जरूरी वेला। राज्य रा उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का में कठे कठे जोरदार मेह बरसियो। 27 जिला सारू काल बरसात रो येलो अलर्ट। राज्य सरकार 183 आरएएस अहलकारा रा तबादला कीना। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे किसानों भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। वह टूटा छप्पर में भी हो वह कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम में सगला काश्तकार भाया ने बहना ने चंचलों ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने ढोगरा जैसा। महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल जी आपने, और जो अपना भाई लोग बैठे कार्यक्रम सुन रहे हैं बने में घनी घनी राम राम सा।
6: रामा श्यामा तो है ही, रास तो जो बिरखा की झड़ी लागी है ना, लाड़ली टाइम भी आपा जब मिलिया तो खूब चौकी बरसात हो रही है साहब।
7: बिल्कुल बहुत चौको मेह बरस रहे है, चौमासा को टाइम है और बरसात देखो होती रहे, दिन में हो जाए रात में हो जाए, कना भी आसमान में जी आपा बादला ने चालता देखा और बिजली कड़के तो ये लगा कि भी देखो कठिन तो मोरिया बोले और खटे भी चौकू बरसात होगी। तो बिजली की बात याद आई तो ये टाइम बरसात का मौसम है, आप अभी गांव ढाणी कमाए रहवा हाँ, जका पशुपालक ही मैं अपने भेड़ बकरी ने चराबा के लिए कुछ जो की पहाड़ी हुए हैं जका चराई हुए बैठे लेके भी जावे और घूमबा फिरबा ने आपा भी जावा तो थोड़ी सी सावधानी को भी ध्यान रखना चाहिए।
6: बिल्कुल महेश भाई, आज जब मैं आ रही तो एक तो बरसात बहुत तेज ही और हवा भी चल रही थोड़ी बहुत, और एक टहनी बहुत बड़ा पेड़ के जो डालो जिन्हें कहवा ना अचानक से टूटर पड़ी। अब आसपास में थे जानो ये थड़ी ही एक और लोग खड़ा ही रहे, बरसात हो तो भैया अभी पेड़ा के नीचे आर खड़ा हुआ है भाई, एकदम सु आर पड़ी कोई के लागी को नहीं, गनीमत ही पर डर तो बहुत लागो साहब।
7: देखो जगह पुराना पेड़ ही कोई जो को सुखेड़ो है तो बरसात के में कोई आप खड़े हाँ भी बीजवा से बचवा के लिए तो कोई पेड़ भी गिर सके है या कोई कच्ची दीवार के सहारे कई बार खड़े हो कि आप आश्रय ले लेवा तो बा भी गिर सके है, बिल्कुल भी कोई भरोसा को नहीं। तो बरसात का माए आपा कटे फंस गया हाँ या मौसम खराब हो रहे भी आंधी तूफान के साथ में बिजली की गिरबा की संभावना है तो आपा जो कोई पक्को मकान हो बिक माए अपने आश्रय लेना चाहिए।
6: बिल्कुल, दूसरी बात आजकल बरसात है और तकनीक को युग है, बिजली की तारा भी खूब फैलोड़ी रहे है, सब सुविधा तो सुविधा की जगह है पर जब बरसात को मौसम हो तो कई बार हो कि तार वार टूट जावे तो ऐसी स्थिति में करंट फैलवा को भी डर रहे है और बड़ो हादसों भी हो सके है। तो ये बात को आप ध्यान रखा कि आसपास कड़े कोई तार टूटे है आपने पत्तो चाले है तो तुरंत आप जो बिजली विभाग की हेल्पलाइन है बैठे फोन करना चाहिए, नहीं आजकल तो जगह जगह हर चौराहे पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहे बा नहीं जार सूचित कर दो या कोई भी संबंधित व्यक्ति ने आसपास का लोगों से पूछ और आपने सूचना देनी चाहिए और ऐसी जगह पे जार खुद हीरो नहीं बनना चाहिए क्योंकि बिजली तो कोई की सगी कोने साहब।
7: बिल्कुल जगह खुला तार पड़े रहे बिजली का मैं सु कई बार दुर्घटना हो जाए तो आप भी बरसात के मौसम में बाहर निकला तो पगा का माए जगह रबड़ का जूता चप्पल हुए मैं आपा पहन के निकला रबड़ का जगह या चमड़े का जगह लंबा बूट हुए माने पहन के अपन रात बिरात अगर खेत खलियान में जानो पड़े तो बीच में आपने पगा की सुरक्षा भी हो जाए कोई कील कांटो भी कौन लागे और जगह अपने जो पशुशाला है भी कमाए में कोई तार खुला न पड़े रहे ये भी ध्यान रखा।
6: और एक आजकल को चलन चालू है कि भाई बरसात वैली तो जगह जगह निर्जर भी चाले ला पानी भी बह वेलो और नदियां भी आ जावे उफान मार जावे तो आजकल को जो नयो चलन है जो नया नया टाबर है ए पिकनिक मनाबा जावे साहब यार दोस्त मिलर चार जना आठ जना एकटा और जावे। अब बसी स्थिति में भाई आप रोज तो पानी देखो कोनी तिरबो बहुत चौकी तरीका आवे कोनी आवे भी है तो जब जो वेग आवे पानी को बीमे कोई संभलवा को मौको कोनी मिले ऐसी स्थिति में आजकल आए दिन नहीं आप खबर अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि कोई कठे

0: पिकनिक पे गयो, कोई घूमबा गयो, कोई बंसुमबार गरबा गया, यार बेटे पग फिसलगो, पड़गा, गिरगा, चोट लागी या कोई जानलेवा हादसो होगो, या सड़क पर जा रहा हा बरसात हुई, गड्ढा छा, पानी भरोड़ो, दिखो कुनी गड्ढा में गाड़ी की गाड़ी समागी, तो अच्छी स्थिति में भी आपने ध्यान रखनो चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जगह जल स्त्रोत ही बैठे, देखो काई भी जम जाए है, थोड़ी फिसलन भी हो जाए है, तो पैर फिसल सके, देखो घूमने फिरने की कोई बुराई को नहीं, ध्यान रखना चाहिए, पर थोड़ी सी जो सावधानी जरूरी है।
0: देखो उद्यम फेड़ो जो है समय सारू उम्र के हिसाब से सब चोखो लागे है, बढ़िया लागे है, लेकिन उद्यम फेड़ा में आपने स्वयं विवेक नहीं भूलना चाहिए। दूसरी जी की बात है, आजकल वो सेल्फी रीला को जो जमानो आयो है भाई, एक में तो अशाशा जोखिम थार पे रील बनावे है कि देखो मैं तो ऊपरा से कूदूंगो जिन निर्जर में, या कोई अब निर्जर में जब आप कूदो हो पहाड़ी इलाका हो वह बटे कच्ची गहराई है, उथलो है, छिचलो है, कशोक पानी है, आपने पत्तो को नहीं, आप ऊंचाई से कूदोला, वेग सु नीचे जाओ लो, कोई भाटा सु टकरा जाओ, ताको बैलेंस ही नहीं बने थे, फिसल ही जाओ, नीचे आर पड़ो, तो ऐसे में जो रंग में भंग को काम हो सके साहब।
1: बिल्कुल, चाहे ऊंचाण की जगह पहाड़ी की बात हो, चाहे झरना हो, चाहे तालाब हो, बावड़ी हो, सावधानी जरूरी है, सुरक्षा पहली चीज है, और भी के साथ में आप घूमबा फिरबा को आनंद लियो।
0: अब आनंद की बात आई है तो देखो कार्यक्रम में तो गीत संगीत है जो समूह बांधे है और आनंद दिलावे है, तो एक गीत सुना।
1: बिल्कुल सुना सर,
0: सुनो।

लटपटी छाई नगर बेली, लटपटी छाई नगर बेली।

0: सुनाया हो छुट्टन सिंह की चीरी आवाज में और
1: लटपट छाई नागर बेल बिल्कुल
0: और बरसात में तो जो बेलड़ियां फैल रही है और फैले ही है वनस्पति और आपको भी आपा ध्यान रखा आंको और जे महत्व भी पतो कर तो चालनो चाहे जे आपने
1: तो देखो लोगी तो हो पर अब कार्यक्रम के माये जानकारी की बात है तो कृषि के माये मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बीकी उपयोगिता ये विषय पर जानकारी देसी डॉक्टर बंशीधर और आपसे जानकारी ले रहे हैं नरपत भाई
0: तो बिल्कुल अब आप सुना जानकारी
2: राम राम किसान भाइयों आज आपने भी जानकारी देवा के लिए स्टूडियो में पधारे छे डॉक्टर बंसीधर जी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र वनस्थली विद्यापीठ टोंक में प्रभारी के रूप में पदस्थापित छे जो कि आज आपने जानकारी देवला मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बाकी उपयोगिता के बारे में तो सबसे पहले डॉक्टर साहब था को स्टूडियो में स्वागत है राम राम साहब
3: राम राम साहब
2: तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता के बारे में कोई परिचय दियो
3: सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मृदा क्या होती है जो जमीन की एक डेढ़ फीट तक की गहराई तक जो मिट्टी उपजाऊ होती है उसको मृदा कहते हैं जिसमें अच्छा फसल उत्पादन फल उत्पादन सब्जी उत्पादन की किसानों की अच्छी आ सकती है उस चीज को अपन मृदा कहते हैं भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो उपजाऊ होता है उस उपजाऊ जमीन को अपन मृदा कहते हैं
2: तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि मृदा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी अपने किसान भाई दो
3: मृदा स्वास्थ्य के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मृदा स्वास्थ्य एक उपजाऊ जमीन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती है मृदा स्वास्थ्य भी क्या होता है कि जितना मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगी उसकी उपजाऊपन देने की क्षमता मिट्टी की भी ज्यादा होगी क्योंकि जो भी कोई फसल हो वो स्वास्थ्य पे निर्भर करते हैं कि जमीन का जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना ही अच्छा होगा मृदा स्वास्थ्य के लिए अपन जो बात करते हैं फसल की पूरी उत्पादकता का आधार मानते हैं जो खेत में खेती करता है उसका जो उत्पादकता का आधार होता है वो मृदा ही होता है मृदा में जैविक कार्बन अम्लीयता क्षारीयता लवणता अन्य परिस्थितियां उसमें फास्फोरस जिंक बोरोन अपना ऑर्गन कार्बन पीएच ये सब सामान्य रूप में रहते हैं तो ये मानते हैं कि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अगर ये असंतुलित मात्रा में हो जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है तो जमीन बीमार होने लगती है धीरे धीरे इसका उपजाऊपन घटता है और फसल पैदावार देने की क्षमता भी इसमें कम होती जाती है इसलिए मृदा स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ही जरूरी होता है
2: तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि जो आपने मृदा स्वास्थ्य जमीन कौन कौन सा पोषक तत्वों की जांच करानी चाहिए जो आपने किसान भाई बस से करवा सके थे
3: देखो मुख्य रूप से जमीन में 17 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी फसल का उत्पादन में योगदान देते हैं पर जब जांच होती है तो अपने को 12 तत्वों की जांच होती है उसमें पीएच होता है ईसी होता है जैविक कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज और बोरान तत्वों की जांच अपन कर सकते हैं कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी जांच अपनी मशीनों के द्वारा या लैब में नहीं हो पाती है तो इन जांच में जमीन की अम्लीयता क्षारीयता ईसी कुलशील लवणों की स्थिति जैविक कार्बन की स्थिति इन सब चीजों का पता लगता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये तीन फसल उत्पाद में मुख्य तत्व माने जाते हैं जबकि सल्फर जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज और बोरान तत्व है वो संतुलित पोषण होना जमीन में अच्छी स्वस्थ जमीन में होना इनका बैलेंस या संतुलित मात्रा में होना बहुत ही जरूरी होता है
2: तो डॉक्टर साहब आपने किसान भाई ने बताओ कि जो मृदा स्वास्थ्य जैविक को का उद्देश्य रहे थे
3: इसका जो मृदा स्वास्थ्य का जो उद्देश्य होता है ना उसमें ये होता है कि हर खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होती है उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए
2: जी डॉक्टर साहब
3: और किसानों को हर वर्ष एक ही मात्रा में यूरिया डीएपी अन्य उर्वरकों प्रयोग से बचना होता है कई बार किसान क्या करते हैं हर साल लगातार एक जैसा यूरिया डाल रहे हैं एक जैसा डीएपी फसल में डाल रहे हैं तो जांच के हिसाब से उनको क्या होता कि जितनी आवश्यकता होगा संतुलित मात्रा में ही यूरिया डीएपी का यूज करेंगे इसलिए जमीन का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है
2: जी डॉक्टर साहब
3: मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिल जाती है
2: हाँ जी
3: इसकी जांच करवानी से जिस पोषक तत्वों की कमी आएगी उसी की अपन को पूर्ति करनी होती है उदाहरण के लिए यदि मिट्टी में फास्फोरस पर्याप्त है तो आवश्यक रूप से अधिक डीएपी देने से बचना चाहिए अगर मिट्टी में सल्फर और जिंक की कमी है तो यूरिया और डीएपी के बजाय संबंधित पोषक जिंक और सल्फर ही अपने को देना आवश्यक होता है उर्वरकों के संतुलित उपयोग से कृषि लागत कम होती है उत्पादन क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में दीर्घकालीन तक मिट्टी को लंबे समय तक

0: अच्छी बनाया जा सकता है, जांच करवा करवा के बीच में उसके अनुसार उसमें खाद देते रहेंगे। और किसानों के अनुमान के बजाय किसान क्या करते हैं, जनरली अपना अनुमान लगाते हैं कि मैं बाजरा बो रहा हूँ या गेहूं बो रहा हूँ या चना बो रहा हूँ, उसमें क्या देना अनुमान से करते हैं। जब अपने को मिट्टी की जांच होती है, जैसा स्वास्थ्य रहता है, उसके हिसाब से ही खाद अपने को खेतों में पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है, जिससे लंबे समय तक जमीन को उत्पादन को स्थिर रखा जा सकता है और पैदावार में कमी नहीं आएगी, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और जो इम्बेलेंस मतलब असंतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक डाल रहे हैं उनसे बचा जा सकता है इसलिए खेती का। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए अपन को मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है कि निर्देशों की उनकी पूर्ति होती रहे।
1: बहुत ही चौकी जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कहीं कहीं उद्देश्य, जो अपने किसान भाई ने बहुत ज्यादा फायदा मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब मैं थाने वो भी पूछना चाहूंगा अपने किसान भाई के लिए कि जो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रहे हैं, जांच के लिए कौन कौन सा नमूना और की प्रकार से हमें लेना चाहिए।
0: देखो नरपत जी, किसान जांच तो करवाते हैं पर उनको क्या है कि जांच का जो नमूना लेना होता है ना, वो सही तरह से नमूना नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है जांच का, जीरो से लेके 15 सेंटीमीटर जो मिट्टी होती है उसमें एक सीधा गड्ढा करें और उसको ऊपर से नीचे तक काटें, या एक यंत्र आता है इसमें जिसको कहते हैं ओगर
1: जी।
0: ओगर जमीन को 15 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी को, जैसे गड्ढे खोदने की मशीनें होती हैं, किसान पोल गाड़ते हैं बिजली के, वैसे गड्ढे खोदने की मशीन आती है, उससे ओगर को घुमा के उसका सैंपल लेते हैं और उसमें पूरे खेत होता है, एक हेक्टर का खेत होता है, उस एक हेक्टर के खेत में 4 या 5 जगह से अपन नमूना लेते हैं और उन सब नमूनों को एक जगह मिला लेते हैं। एक जगह मिलाने के बाद में उनको धीरे धीरे 2-3 बार मिला के 5 नमूनों को एक जगह करके 250 ग्राम के आसपास जो नमूना अपने पास में बच गया उसमें अपना खेत, किसान अपना नाम लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, खेत का कसरा नंबर लिखेगा, गांव लिखेगा, तहसील लिखेगा और जिला लिख के जो भी नजदीक में मिट्टी पानी की प्रयोगशाला होती है, हर कृषि विभाग का जो जिला स्तरीय मुख्यालय होता है वहां भी होती है, कृषि विज्ञान केंद्र जो भी अपनी राजस्थान में बने हुए हैं उनके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होती है, वहां भी परीक्षण प्रयोगशाला होती है और आपका जो एग्रीकल्चर का जो क्लस्टर होता है दो ब्लॉक को मिला के होता है वहां भी लैब होती है। उस जगह लैब में किसान अपना नमूना दे दे तो वो अपनी उसकी जांच होके प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है। और आज के टाइम में तो कृषि विभाग ने या राजस्थान सरकार ने यह अनिवार्यता कर दी कि जो भी किसान कृषि विभाग से सब्सिडी लेता है उसमें अपने मृदा स्वास्थ्य का कार्ड उस सब्सिडी के फार्म के साथ में जरूर लगाएगा।
1: बहुत ही चौकी जानकारी बताया डॉक्टर साहब। मैं अपना किसान भाई के लिए यह भी पूछना चाहूंगा कि जो मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा जो नमूने लेना चाहते हैं कौन कौन सी बातें ना अपना किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
0: देखो नमूना लेते टाइम में अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अभी जब नमूना लेते उस टाइम में खेत खाली होना चाहिए
1: जी डॉक्टर साहब,
0: और उससे पहले कोई भी उसमें जो खाद वाद होता है ना वो डला हुआ नहीं होना चाहिए और खेत की मेड या पानी की नाली के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। अलग प्रकृति के अगर खेत 2-3 तरह का होता है, कहीं खेत अच्छा होता है कहीं ऊसर होता है, तो उन खेतों के नमूने भी अलग अलग लेने चाहिए
1: जी डॉक्टर साहब।
0: खेत का जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए। और नरपत जी एक बात और है कि जब भी नमूना लेते हैं तो उस मिट्टी में कोई जड़ पत्ती कोई कंकड़ पत्थर ऐसे साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। और जो नमूना की गहराई एक विशेष बात है कि गहराई है ना वो सभी जगह से किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि गहराई एक कभी भी किसान क्या ढेला उठा के टेस्ट करवा लेते हैं तो हर गड्ढे की जो 5 या 6 जगह से हम पल ले रहे हैं खेत में उनकी गहराई भी सबकी एक जगह होनी चाहिए। और ज्यादा आवश्यक ये भी रहता है कि नमूने के साथ में किसान आवश्यक जानकारी अवश्य दे कि पहले उसने कौन सी फसल बोई थी, आगे बोने वाली फसल कौन सी बोएगा
1: जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैं थाना यह भी पूछना चाहूंगा अपने किसान भाई के लिए कि जो बात है मृदा नमूना लेबा के बारे में तो बता दिया लेकिन जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड छे तो बीस अपने किसान भाई में का उपयोगिता है, कौन कौन सा लाभ ले सके छे।
0: हाँ यही टाइम में आज की आवश्यकता है कि किसान जांच भी करवा लेता है, कार्ड को देख भी लेता है, मृदा का स्वास्थ्य भी सोचता भी है, पर इसके लिए उसका महत्व क्या है। जब भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपना बनता है तो उसका जो सबसे बड़ा महत्व होता है सबसे पहले अपने देखते हैं कि पीएच मान, ये पोषक तत्वों की उपलब्धता से संबंधित काम करता है और जड़ की वृद्धि के लिए पीएच मान ये होता है कि जमीनों का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, वो जमीन अच्छी मानी जाती है
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तीसरी जो दूसरी बात आती है वो होती है इसी विद्युत चालकता बोलते हैं मिट्टी की, अगर ये 1 डेसीमीटर से अधिक होती है तो जो भी जमीन में पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषण करने में प्रभावित

0: करती है। जैविक कार्बन, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जमीन का जैविक कार्बन 0.5 से 0.7 के बीच में रहता है, तो ये अच्छी पोषक जमीन मानी जाती है कि मिट्टी की संरचना है, जल धारण क्षमता है, सूक्ष्म जीव गतिविधियां हैं, पोषक तत्व की उपलब्धता हुई, ऑर्गन कार्बन से सुधार होता है। जो भी किसान खाद देते हैं नरपत जी, उनको जो पौधों की जड़ों को उपलब्ध करवाता है उसमें ऑर्गन कार्बन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर होती है नाइट्रोजन, जो 280 से 560 किलोग्राम अगर किसी खेत में जांच मिलती है तो उपयुक्त होते हैं। ये पौधों की पत्तियों और तनों की वृद्धि करता है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के काम में भी आपको नाइट्रोजन काम में आता है। फास्फोरस 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर अगर मिलता है तो जमीन में उपयुक्त उसकी मात्रा मानी जाती है। इससे कम या ज्यादा होता है तो उपयुक्त नहीं माना जाता है। जड़ों का विकास है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, बीज बढ़ना, फल बढ़ना, इसमें फास्फोरस का महत्व होता है। पोटास है 110 किलो से कम होती है तो उसको कम मानते हैं, और 110 किलो से लेके 280 किलो के बीच में रहती है तो ये पर्याप्त मात्रा में, मध्यम मात्रा में मानी जाती है। तो पोटास का महत्व होता है कि जड़ों में जल का संतुलन मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पोटास बढ़ाती है कि कोई भी कीड़ा और बीमारी भी लगता है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पोटास बढ़ाती है, और उपज की जो गुणवत्ता होती है, दाने में चमक है, उसका मोटापना है, अच्छा पकड़ा है, ये भी पोटास का है। फिर दूसरी चीज होती है अपनी सल्फर है। सल्फर क्या है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाती है
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तो सल्फर भी अपनी देख के जांच करके, ये सल्फर से प्रोटीन अमीनो अम्ल का निर्माण होता है जिससे नाइट्रोजन का भी इसमें महत्व बढ़ जाता है। जिंक सल्फेट जो अपनी 6 ppm के आसपास खेत में होनी चाहिए, एंजाइमों की सक्रियता बढ़ती है, वृद्धि निर्माण में भी काम आती है, तब पौधों का वृद्धि और विकास में जिंक सल्फेट का भी जरूरी है। आयरन है जो 6.5 ppm के आसपास होना चाहिए, इसमें आयरन का जो महत्व है वो क्लोरोफिल के निर्माण में काम आता है। क्लोरोफिल जितना अच्छा बनेगा पौधा में उतना ही पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है आयरन, और एंजाइम की क्रिया को भी बढ़ाता है। और मैं किसानों से नरपत जी, और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं अपने कॉपर, मैग्नीज और बोरान, ये भी तीन एक सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी जांच भी होती है। इनका सबका महत्व होता है ना सूक्ष्म तत्वों का, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाना होता है
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तो इनकी भी पूर्ति अपन मृदा के लिए अच्छी तरह करेंगे तो जमीन अच्छी रहेगी और उत्पादन बढ़ेगा, किसानों का लागत खर्चा घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब सारे चीज अच्छे होंगे तो उनका उत्पादन है वो अच्छी कीमत पर भी बिकेगा।
1: बहुत ही चुकी जानकारी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाकी उपयोगिता के बारे में, और यह उपयोगिता हमारा किसान भाई इन्हें मनन भी करेगा। लेकिन चलता चलता डॉक्टर साहब मैं यू भी पूछना चाहूंगा कि जो मृदा स्वास्थ्य से संबंधित और हमारा किसान भाई अंत कई संदेश दे बचाओ जो भी संदेश के बारे में
0: कुछ ऐसे इस मृदा स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसमें एक है कि किसान फसल चक्र का प्रयोग करे
1: जी।
0: अच्छी मिट्टी को रखने के लिए एक जैसी फसलों को लगातार बार बार नहीं बोए, फसल चक्र। दूसरी चीज, खेतों में दलहनी फसलों का ज्यादा समावेश करें। दलहनी फसलें जमीन की उर्वरता को बढ़ाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। एक अपनी को जो मिट्टी और सिंचाई का पानी है उसकी भी अपन जांच करवाते रहें, कि ऐसा नहीं कि अपन सिंचाई का खेत का कुएं का पानी खराब है, मिट्टी की तो जांच करवा रहे हैं, पानी की जांच नहीं करवा रहे हैं, तो उस पानी से भी जमीन खराब होती है, तो पानी की भी जांच करवाते रहें। खेतों में गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग ज्यादा करें। प्राकृतिक खेती को भी किसान अपनाएं, कि प्राकृतिक जो बीजामृत, जीवामृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो भी प्राकृतिक खेती के अस्त्र हैं उन अस्त्रों का भी किसान अपन प्रयोग करें, जिससे जमीन अच्छी स्वस्थ बनी रहेगी। और गोबर की खाद है वो खेतों में सड़ी हुई खाद डाले, गोबर नहीं डाले। किसानों से मेरा नरपत जी में बार बार यही निवेदन करता हूँ हमेशा, किसान की चौपाल हो या किसानों के कोई कार्यक्रम हो या गोष्ठी हो, कि खेत में गोबर नहीं डाल के गोबर का खाद डालें
1: जी डॉक्टर साहब।
0: कि सड़ावा गोबर का खाद डालेंगे खेत में अच्छे पोषक तत्व तो मिलेंगे, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा सुधरेगा। और कच्चा गोबर या ज्यादा सड़ावा डालते हैं कच्चा गोबर, तो उससे दीमक, कीड़े, बीमारियां बढ़ती हैं। और एक जो इसी मृदा स्वास्थ्य संबंधित विशेष जानकारी है, किसान 2 या 3 वर्ष में अपने खेत की जांच अवश्य करवाते रहे, और जो मिट्टी पैटर्न के गहरे हल होते हैं डिस्क प्लाउ या एमडी प्लाउ से गर्मी के महीने में एक बार गर्मी में गहरी जुताई जरूर करें, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटाई कर देंगे, तो अपने फसल चक्कर के साथ साथ मिट्टी का चक्कर भी होगा। जब मिट्टी को गर्मी में पलटेंगे तो उसमें प्रकाश जमीन में गहराई तक जाएगा।

0: वायु संचार बढ़ेगा और जमीन में बरसात का पानी होगा वो भी गहराई तक जाने के लिए, तो बारानी खेती में मृदा का स्वास्थ्य, जो ज्यादा पानी होगा जो ऊसर के लवणीयता के कण है वो पानी में घुल के गहराई में चले जाएंगे। तो ये मेरा किसानों से अच्छा निवेदन है, इस खेती में अच्छी जमीन को रखने के लिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे।
1: बहुत ही चौकी जानकारी दिया डॉक्टर साहब की मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाकी उपयोगिता में किसान भाई था कि बात सुने आज ने अमल भी कर ला। देखो किसान भाइयों आपने सामने अभी मौजूद है डॉक्टर बंसीधर जी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली विद्यापीठ टोंक में प्रभारी का पद स्थापित थे और थे मां के स्टूडियो में बताया। इतनी चौकी और महती जानकारी मां किसान भाइयों ने पूर्ति करवाई के लिए डॉक्टर साहब था को घनो घनो धन्यवाद। राम राम सा।
2: और धन्यवाद तो नरपत भाई रो भी है कि बहुत फूटरी जानकारी आपने दिवाया।
3: और किसान भाई सुनी जानकारी। अब देखो चंचल जी चलता चलता जयपुर का मौसम को थोड़ा हाल बता देवा। पिछला 24 घंटा में जयपुर को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, अगले 24 घंटा में जयपुर को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ बारिश की संभावना है।
2: बिल्कुल साहब। और अब जब जानकारी की बात आई है तो थोड़ा सो मंडी भाव की तरफ भी आपा चला। सबसे पहली बात करा गेहूं री। जयपुर की मंडी में गेहूं रो भाव रहे 2,535 रुपया प्रति क्विंटल। ओसिया मथानिया में गेहूं रो भाव रहे 2,300 रुपया और बीकानेर की मंडी में गेहूं रो भाव रहे 2,575 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों की बात करा तो जयपुर की मंडी में सरसों रो भाव 3,701 रुपया, कोटा की मंडी में सरसों को भाव 7,699 रुपया और रामगंज मंडी में सरसों रो भाव रहे 7,271 रुपया प्रति क्विंटल। बात करा बाजरा दी तो जयपुर की मंडी में बाजरा रो भाव 2,080 रुपया, ओसिया मथानिया की मंडी में बाजरा रो भाव 1,800 रुपया, बस्सी की मंडी में बाजरा रो भाव 2,200 रुपया और सादुलपुर की मंडी में बाजार भाव रहे 1,900 रुपया प्रति क्विंटल।
3: और बड़ी इशारों कर रही है कि किसान वाणी को जो समय वो पूरे हो चले तो लेवा आज्ञा करा सबने।
2: राम राम सा।
4: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: चला बोल रहा
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए।
5: मतलब
4: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, रूप में बात समेत नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
8: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की बाट उड़ीकता सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो हरियो भरियो सु राम राम सगला बड़ा पूढ़ा ने एक बार ओजू ढोगर जैसा और महेश भाई आपने भी एक बार ओजू घना मान राम राम सा
1: राम राम चंचल जी आपने और जो अपना काश्तकार भाई लोग बैठे चौपाल का मैं कार्यक्रम सुन रहे हैं बने हुई घनी मोकली राम राम और देखो शाम को भगत है दिन का मैं चोखो मैं बरसेड़ो और मैं बरस जाए तो रात बिरात भी देखो मैं छाट आ जाए ही अपना जगह काश्तकार भाई लोग ही पशुधन भी रखे हैं गाय भैंस भेड़ बकरी तो अबार तो देखो बाड़ा कमाए अपना जगह पशु ही बे बंदेड़ा रहे पर चौमासे कमाए जी आपा भी थोड़ा अपनी आवास व्यवस्था को ध्यान रखा हाँ कि भी देखो जगह की बरसात से बचवा के लिए तो भी जगह अपने जगह पशु ही माँ को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल महेश भाई आजकल तो जब ध्यान की बात आवे ना तो काश्तकार है या पशुपालक भाई बहन ना थोड़ा निश्चिंत हो जावे कि सावन चल रहे है बरसात को मौसम है हरियो ही हरियो मिले है साहब अब हरियो हरियो मिले तो ढांडा ने छोड़ देवे ढांडा खूब हरियो हरियो चरे है अब जब खूब सारो हरियो चढ़ लेवे है ना तो फिर कहीं होवे है कि बाकी तबियत बिगड़वा लाग जावे वा में अजीब अजीब सा लक्षण दिखे है और काश्तकार कहीं सोचे ज्यादा खा लियो साहब आफर हो गो लो या ज्यादा खाबासू आमे जो है कि अबार पचो को नहीं उंडो लेकिन वे यो भूल जावे है कि ज्यादा घास या हरियो चारो खाबासू कई बार ढांडा को जो शरीर है बीमे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तो कम हो जावे और पोटेशियम जो है ज्यादा हो जावे जीसू हो जावे घास टिटैनी रोग तो एक आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको जो ढांडो है ढोर है वो बहुत हरो चारो खा रहे है हरो ही हरो चर रहे है तो बिने साथ में थोड़ो सो सूखो भूसो भी आपने खिलाना है
1: बिल्कुल हरे चारे की मात्रा बात थोड़ी टाइम सीमित होनी चाहिए बीके साथ में थोड़ा सा सूखो चारा हुए संतुलित हुए और बरसात का मैं यहाँ पर देखा कि पशु जटे बंदेड़ा रहे जो वाको बाड़ो हुए बटे पानी पात जमा हो जाए कीचड़ का दो हो जाए तो बरसात का मैं पशुओं का मैं यहाँ पर देखा कि पैर की बीमारी त्वचा रोग बुखार थनेला इसी समस्या आम तौर से पाई जावे और यहाँ की जो मुख्य वजह वह यह है कि पशुशाला का मैं पानी जमा होना कीचड़ गोबर की सफाई जगह पशुओं का शरीर से न हो तो जरूरी है कि भी पशुशाला की भी थोड़ी सी देखभाल होनी चाहिए
0: बिल्कुल थोड़ी तो एक तो आंगन थोड़ा ऊंचो होना चाहिए हाँ। और ढलान अच्छी होनी चाहिए कि अगर पानी आ रहे है या जो मूत्र है वो भी एक टोरे तो भी निकल जावे बठे सू दूसरो जी को आपने जो छत है या कोई दीवार है टूट रही है बरसात तो आवे ही ली नहीं तो खेती कहीं आवेली तो बरसात तो आनी चाहिए अगर पानी टपक रहे हो तो बीकी मरम्मत भी बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल जब आप देखा कि पानी जमा न हुए और जो कि सूखी रेत वाली मिट्टी है और जो कि सूखी बिछावन है भी की थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए दोनों टाइम जो का फर्श है भी की सफाई होनी चाहिए जो गोबर गोमूत्र है बिना हटा के और बटे सफाई होनी चाहिए कृमिनाशक से भी बिना समय समय पर धोना चाहिए फर्श ने
0: बिल्कुल बरसात को मौसम है तो मच्छर है माख्या है हरिया मच्छर है जो कि आपने न सिर्फ काटे चमड़ी के मायने भी चलिया जावे और फिर वे कई तरीका का और विषाणुओं ने पैदा करे कई तरीका की बीमारी को भी वे कारण बन जावे चीचड़ा भी बहुत हो जावे इस मौसम में तो आ सब बातों को भी ध्यान रखना है कि ना सिर्फ पशुशाला की साफ सफाई आपनो जो ढांडो ढोर है बी की भी साफ सफाई आपने रखनी है
1: डेयरी के मैं आपा देखा कि बहुत सा पशु एक साथ में रह हुए हैं बहुत सा पशु रेवड़ भी रह हुए हैं तो जगह मक्खी और मच्छर भी खूब साथ हो जाए और बाकी जबकि वह चारों खावे तो जबकि बाकी जो पात्र है भी की भी सफाई होनी चाहिए
0: बिल्कुल और पानी की जत्थे तक बात है आपा जो भी खेली है आपने ढांडा के ताई आपा देखा बरसात का मौसम में जब बरसात को भी पानी अगर पड़े है तो कच्चो पक्को पानी जब मिल जावे तो बीमे छोटा छोटा सा गजाई सी हो जावे छोटा छोटा कीड़ा हो जावे अब वे अगर ढांडा के मुंडा में पानी के जरिए जावला पेट में जावला तो वे कई तरीका की बीमारियां कर सके है तो जैसे आपा साफ

0: पानी पीवा, हाँ स्वच्छ पानी पीवा। ढांडा ढोर की भी बिल्कुल जरूरत भी है, बाको अधिकार भी है कि बाकी भी जो खेड़ी है वह साफ होती रहे और भी में स्वच्छ और साफ पानी बाने मिलते रहे।
1: बिल्कुल दोनों टाइम साफ और स्वच्छ पानी मिलते रहे और पानी वहां को बदलते रहे। बाकी जगह नान है जी में चारों चरण बिकी भी रोजीना थोड़ी सफाई होनी चाहिए।
0: दूसरी जी की बात है कि अब नमी बहुत रहे, उमस बहुत रहे, पानी में ही चाले ला ढांडा के ताई कौन सा गम्बूट आ रहा है साहब, तो बाकी तो भाई खुर है जे कीचड़ में भी जावे पानी में भी जावे फिर संक्रमण भी हो जावे कई बार। तो आपा ने जी ने आपा कहवा देखभाल सार संभाल या कहवा निरीक्षण इंस्पेक्शन, तो कोई भी नाम ले लो पर आपने अपना ढांडा ने रोज नित का आपने भी क्यों पूरी निगरानी रखनी है कठे खुरा में तो कोई इन्फेक्शन को

0: आपने भी क्यों पूरी निगरानी रखनी है कठे खुरा में तो कोई इन्फेक्शन को नहीं हो रहा है, कोई संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि खुरपको मुंह पको भी बहुत जल्दी फैल जावे है। तो बी की सांस की सर्दी जुकाम तो नहीं हो रही है बिने, कोई बी के गला कने हाथ लगा देखो घुरघुराहट तो नहीं हो रही है, तापमान तो सही है ठंडा को
1: दूध ठीक प्रकाश में दे रहे है कि नहीं दे रहे, वे ठंड की भी जांच कर ले वहाँ, कई बार पशु बीमार हो तो दूध भी ठीक को नहीं आवे, दूध को रंग ही बदल जाए बिल्कुल
0: बिल्कुल। और अगर संक्रमित पशु को दूध कोई मिनक जून पीवे ली तो बी में भी कई तरीका की बीमारियां हो सके। तो यो एक आपा कहवा की चक्र है, एक तो दूसरा आपा जुड़ोड़ा हाँ, न सिर्फ आमदनी में बल्कि सेहत का मामला में भी की आपा ढांडा सो मिलवाड़ो जो दूध पी रहा हाँ बी सो आपा ने भी संक्रमण हो सके। और आपा ढांडा सो तरीका सो भी जुड़ा हुआ है, ढांडो आपा ने यूं भी देखा है कि आपा बी की संभाल करा, भाई बी के तो चार पग है आपने कने दो हाथ है
1: बिल्कुल। देखो पशु है वो काश्तकार को देखो एक रात दिन को साथी है, बिशु दूध भी मिले आमदनी भी मिले, तो बी की देखभाल करवा की जिम्मेदारी भी अपनी है, तो बी की आवास की और भोजन की व्यवस्था जी मौसम के अनुसार आपने रखनी चाहिए
0: बिल्कुल साहब रखनी चाहिए। और अब आपने थोड़ी सी जो जानकारी रखनी है जानकारी दुआनी है बी की तरफ आपा बढ़ा
1: बिल्कुल शून्य बजट कृषि पर जानकारी दे रहे से आपा लक्ष्मण राम जी से
0: तो सुनाओ साहब।
1: तो किसान भाई देखो आज अपने बीच मौजूद है लक्ष्मण राम संयुक्त निदेशक कृषि आदान कृषि आयुक्तालय जयपुर से अपने बीच पधारे हैं और आपसे आज जानकारी लेवाऊंगा शून्य बजट खेती के बारे में। तो लक्ष्मण राम जी स्वागत है कार्यक्रम में आपको, राम राम।
2: राम राम जी।
1: लक्ष्मण जी देखो शून्य बजट खेती की बात कर रहे हैं, यानी कि खेती को बजट शून्य हो जाए और किसान को जो मुनाफा है वो ज्यादा रहे, तो कई है या शून्य बजट खेती जिन्हें आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती भी कहवा हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
2: किसान भाई जैसे अपन ने बात करें कि जब हरित क्रांति जब आई अपने तो उस समय देश की प्राथमिकता ये थी कि अन्न अधिक से अधिक उत्पादन हो, साथ में अपने रसायनों का ज्यादा उपयोग उसके साथ में जोड़ दिया जिससे अपने जो खेती थी अपना खेत था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, बेशक की उत्पादन बढ़ा है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है अपने उत्पाद की क्वालिटी भी में केमिकल आ गया और जो जमीन थी उसमें भी केमिकल आ गया। तो प्राकृतिक और जीरो बजट में है कि अपने प्रकृति में जो खेती है इसमें अपने को जो भी प्राकृतिक में जो चीज उपलब्ध है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और रसायनों का कम उपयोग करके लागत को कम करना और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद लेना, यही जैविक खेती है
1: जी। लक्ष्मण जी देखो खेती की बात कर रहे हैं तो किसान भाई खेती कर रहे ही और जो फसल ही उगा रहे ही वाने बेच रहे ही दो पैसा कमा भी रही और नाजदाना तो हो ही रहे, पर अपने क्यों आवश्यकता है कि व्यापार जबकि आप प्राकृतिक खेती है इन्हें अपना हुआ।
2: किसान भाइयों तो जैसे अपन बात करें कि एक तो कृषि में लागत बढ़ गई और जो गुणवत्ता जितनी अच्छी गुणवत्ता आनी चाहिए थी की बजाय हल्की आई, तो इसका जो जैविक खेती का यही है कि जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन उनका उपयोग किया जाए और रसायनों का कम से कम उपयोग किया जाए, साथ में ही जो प्रकृति में उपलब्ध है जैसे आपके नीम के पत्तियां हैं या जो भी अपने काश्तकार भाई गोबर की खाद या वो तैयार करता है उसके साथ में केंचुए खाद तैयार करे नेडअप कंपोस्ट के खाद तैयार करे, साथ में ही ये जो अपने प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उनका सदुपयोग करके ऐसे उत्पाद तैयार करे जो अपना खेत की गुणवत्ता भी बढ़े उत्पादन भी बढ़े और लागत कम होवे, यही अपना मेन उद्देश्य है प्राकृतिक खेती का
1: जी। लक्ष्मण जी देखो खेती किसानी के माये नया नया नवाचार हो रहे ही और कोई भी जो नवाचार हो उसको कुछ उद्देश्य तो रह गई है, तो जो अपनी यहाँ प्राकृतिक खेती है एक माये किसान के लिए और जो फसल उत्पाद ही एक उपभोक्ता के लिए वहाँ के लिए इस खेती को उद्देश्य कही है।
2: प्राकृतिक खेती का उद्देश्य यही है कि अपन जैसे बाजार में एक ऑर्गेनिक खेती जिसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक उत्पाद कहते हैं
1: जी,
2: आपने कभी बाजार में गए होंगे आजकल अखबार वगैरह में आता है कि कार्बनिक उत्पाद, तो अपने केमिकल या डीएपी यूरिया केमिकल डाल करके गेहूं का उत्पादन करें, साथ में ही इसको कम करके या मैं तो कह रहा हूं कि उर्वरक वगैरह की बजाय आदमी बिल्कुल गोबर की खाद से, साथ में ही कुछ ऐसे उत्पाद हैं कीड़े वगैरह लगे तो जैसे नीम की पत्तियां हैं उनसे उत्पाद तैयार करें, इनके उपयोग से जो उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और मार्केट में उसकी वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी और अपने का जो खेत है उसकी गुणवत्ता उसकी उर्वरता और उत्पादकता भी बढ़ेगी, यही अपना प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है।
1: प्राकृतिक खेती का जो मॉडल ही वहां के बारे में बात करें तो यह

0: प्राकृतिक खेती कतरे प्रकार की है और के प्रकार से उन्हें की जा सके?
1: देखो, अपन पुराने शुरुआत की बात करें तो जैविक खेती के बहुत से प्रकार है। जैसे अपन बात करें वैदिक खेती या ऋषि खेती, पंचांग खेती, प्राकृतिक खेती, और मैं तो सूर्य खेती भी एक, जिसमें प्रकाश का ज्यादा ज्यादा, सूर्य के प्रकाश का ज्यादा ज्यादा सदुपयोग करके उसको सूर्य खेती कहेंगे। जीरो बजट खेती है, साथ में योगिक खेती और बायोडायनेमिक खेती, ये कुछ प्राकृतिक खेती के प्रकार हैं।
0: जी, तो जैविक खेती के कंपोनेंट की बात करें तो जैविक खेती का जो कंपोनेंट ही वे कौन कौन से हैं सर?
1: जैविक खेती के कंपोनेंट की बात करें, जैसे खासकर भाई जैसे हरी खाद बनाए, कबर में कंपोस्ट तैयार करे, फसल चक्र का ध्यान रखे, जैविक प्रबंधन, जो भी किसान भाई के खेत में या घर में या पशु जहां बांधता है, जो भी उसका उत्पाद है उसका सदुपयोग करके, साथ में पशुपालन का, जैसे गोपालन की बात अपन करें, गोमूत्र है या गाय का गोबर है, ऐसे इनका सदुपयोग किया जाए। बायो फर्टिलाइजर, मान लो अपने को बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना है, और जो अपने गोबर की खाद है उसका अच्छी तरह से डिकम्पोज होने के बाद में काम लेना, ये कुछ प्राकृतिक खेती के घटक है।
0: जी लक्ष्मण जी, देखो जो किसान भाई ही मतलब एक फसल हो है, तो बीचो चोखो उत्पाद लेबा के लिए और फसल की बढ़वार के लिए जरूरी है कि बीकम एक चोखी जैविक खाद दी जाए। तो जो वर्मी कम्पोस्ट है अभी, क्योंकि एक जैविक खाद है और किसान भाई को उपयोग भी करे, तो वर्मी कम्पोस्ट खाद जो है किस प्रकार से खेत में तैयार है उसके?
1: देव किसान भाई, मैं तो किसान भाई से निवेदन करना चाहूंगा, हर किसान भाई को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगानी चाहिए, क्योंकि काश्कार भाई के पास में फसल का अवशेष उपलब्ध है, गोबर की, क्योंकि पशुपालन करता है तो गोबर की खाद उपलब्ध है, रसोई का जो वेस्ट है वो भी उपलब्ध है, साथ में कैंचवे, कैंचवे से कैंचवे की खाद तैयार होगी। तो हर किसान भाई कैंचवे का गड्ढा तैयार कर ले जमीन के ऊपर, भाई उसकी हाइट कर ले, चार से पांच फीट हाइट होनी चाहिए, 15 फीट लंबा होना चाहिए, 5 फीट चौड़ा होना चाहिए। सुविधा के हिसाब से किसान भाई वर्मी कंपोस्ट जो गड्ढा जो तैयार करता है वो उसके एक भी बना सकता है, जैसे जितने पशु हैं 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, और रोटेशन में उसको कैंचवे खाद तैयार करे, और जैसे जैसे अगर तैयार खाद हो, जैसे मान लो अपने जिस गड्ढे को कैंचवे खाद को पैक कर दिया तो 50 से 60 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाती है, तो उसको काम में ले ले, दूसरा गड्ढे को भरना चालू कर दे, तीसरे गड्ढे, इस हिसाब से ये कैंचवे खाद तैयार होती है। तो किसान भाई से मैं निवेदन ये करूंगा कि हर किसान भाई अपने खेत पे वर्मी कम्पोस्ट यूनिट जरूर लगाए।
0: अच्छा, और लक्ष्मण जी देखो, वर्मी कम्पोस्ट की बात कर रहे हैं तो किसान भाई खुद के लिए तो यह खाद तैयार कर ही ले, पर साथ साथ अपन देख रहे हैं कि बहुत से किसान भाई हैं जगह खुद तैयार नहीं कर पाए, तो वह दूसरी जगह से आजकल खरीद के ले आए, तो किसान भाई खेत पर खाद तैयार करके उन्हें बेचने के हिसाब से भी बना सके ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ का किसान भाई अपना ऐसा एफपीओ बना लेते हैं या खुद अपना है, बहुत से काश्तकार भाई ऐसे है कि जो वर्मी कम्पोस्ट अपने खेत पे तैयार करके बाजार में, जैसे कोई सब्जी है वह उत्पादन कर रहा है या पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है या पेड़ लगाना चाह रहा है, तो आजकल इसी वर्मी कंपोस्ट की डिमांड खूब है, तो अपने खेत के साथ में भी अपना इसका व्यवसाय भी किसान भाई कर सकता है,
0: व्यावसायिक रूप में भी इन्हें कर सका मतलब?
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और आप जो रसोई को जो वेस्टेज है उन्हें भी बताया, तो मतलब है कि जो फल सब्जी का छिलका ही वहां से भी खाद तैयार है उसके?
1: बिल्कुल, मैंने निवेदन किया कि जो भी भाई अपने को गोबर की खाद, फसल का अवशेष और रसोई का अवशेष, जो भी अपना बिना, जैसे भाई जैसे कूड़ा कूड़ जो भी है गन्ने की है, इसमें सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने को नहीं काम में लेनी, वो पत्थर है, कांच है, प्लास्टिक है, सेरेमिक है, धातु की जो के अलावा जो भी अपना कचरा है वो कैंचवा की खाद बनाने में आराम से काश्तकार भाई काम में ले सकता है।
0: जी, तो बात करें आप हरी खाद की, तो यह जो हरी खाद है इसके बारे में बताओ कि किस प्रकार की खाद है और किसान भाई क्या तैयार कर सके?
1: देखो किसान भाई, हरी खाद में तो ये कह रहा हूं कि हर किसान भाई को 3 साल में अपने जो 2 या 3 या 4 जो भी खेत हैं, तो हर तीसरी साल में हर खेत में हरी खाद बुआई करनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: हरी खाद में से मुख्य रूप से ढेंचा है, ढेंचे की बुआई कर दीजिए, और जब वो ढेंचा 50 से 60 दिन का हो जाए तो उसमें उस मिट्टी, उसमें प्लाउ से मिट्टी मिला दीजिए, तो आपको नेचुरल इतनी बढ़िया उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और उर्वरकता

0: बढ़ेगी और जितना उत्पादन अपने को अपन रेगुलर अगर कोई ले रहे हैं, अगर 30-30 साल में अपन किसी खेत में ढेंचा की हरी खाद बना करके उसमें मिट्टी मिला देंगे तो वास्तव में उसका उत्पादन बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी बढ़ेगी।
1: लक्ष्मण जी देखो जो अपना किसान भाई ही वह बिया तो जाने ही पर जो कृषि विशेषज्ञ ही बने यही बताते रहे कि खेत में फसल चक्र ने हमेशा अपनाना चाहिए क्योंकि एक ही फसल जब आप लगातार खेत में बोता रहना तो खेत को जो उत्पादन है फसल को वो कम हो गया है तो फसल चक्र प्रबंधन का ही है और किसान भाई के लिए क्यों जरूरी है।
0: देखो किसान भाई फसल चक्र वैसे तो पुराने आदमी सब जानते हैं भाई दलहन के बाद में जैसे अपन मान लो किसी के खेत में अपन ने ये अनाज वाली फसल ली है तो अनाज के बाद में दलहन वाली फसल लेनी चाहिए
1: जी।
0: ये नहीं कोई अनाज वाली फसल के बाद में अनाज वाली फसल ले लें जैसे गेहूं के बाद में अपन गेहूं की फसल ले रहे हैं तो अपन गेहूं अपन रबी में ले रहे हैं तो खरीफ के अंदर अपने कोई भी मोट है मूंग है दलहन वाली फसल लेंगे तो यही एक फसल चक्र है। लगातार हर किसी भी खेत में अपने को फसल चक्र का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दलहन के बाद में अपने को सीरियस लेना चाहिए और सीरियस के बाद दलहन लेना चाहिए तो ये थोड़ा सा वैसे तो पुराने किसान भाई सब जानते हैं तो फसल चक्र का जरूर ध्यान रखें तो अपने को जो प्राकृतिक खेती वाली ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट घटक है प्राकृतिक खेती का
1: जी। तो यानी कि फसल चक्र प्रबंधन किसान भाई के लिए बहुत जरूरी है साहब और किसान भाई ने फसल चक्र प्रबंधन अपनाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी लक्ष्मण राम संयुक्त निदेशक कृषि आदान कृषि अटल जयपुर से आया और किसान भाई ने जो है शून्य बजट खेती जिन्हें की आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती भी कहवा ये विषय पर दी। तो लक्ष्मण राम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
2: बहुत बढ़िया महेश भाई जानकारी तो आप दिवाया ही और सही बात है कि जो शून्य बजट कृषि वैली यानी कि आप हमेशा सुन चावा की काश्तकार की जो आय है वह बढ़ती रहे आगे बढ़े और कम लागत वे पीसो मुनाफो ज्यादा हुए तो नवाचार तो आपने जो है अपनाना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल खर्चा ही कम कर सका आप तो जानकारी तो चौकी ही पर आप देखो मंगलवार को दिन है
2: हाँ
1: चौको सो भजन होना चाहिए हनुमान जी को।
2: बिल्कुल बिल्कुल तो आप ले आया हो पोटली में तो खोल दो पोटली।

0: तो बहुत ही सातरो गीत भजन बालाजी को और
1: राम गोपाल योगी पार्टी की आवाज में देखो आपा भजन सुने और भजन मिली को तो हनुमान जी को जो को दिन है।

0: और बेड़ों तो पार लगाए देशी साहब। और देखो आवार जिया बालाजी को भजन चाले हो, सावन चाल रहे हो, खूब शस्त्र गैटर सब अमणिया हो रही है और लोग जा भी रहा है, आ भी रहा है, खूब चूरमा दाल बाटी घुट रहा है साहब। पर कई बार कहीं हुआ है कि बरसात को जो मौसम है ना, इमें गरिष्ठ जो खानो होवे ज्यादा घी तेल मसाला को यो खाबो बड़ो दुबर हो जावे, मुश्किल हो जावे। और खाबो तो मुश्किल को नहीं क्योंकि जीभ ने बहुत चोखो लागे, लेकिन बिने पचावो बड़ो मुश्किल हो जावे। तो जो है कि आपा गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए। दूसरी जी की बात है कि जो ये मौसम चल रहे है बरसात को, आपा पहली भी बात कर रहा कि आवा जावा में आपने बहुत चीजा को ध्यान रखनो चाहिए। और देखो यह बात है कि मौसम खराब है, सड़का खराब है, या तो है ही है बात, लेकिन आपने यू ध्यान रखनो कि आपनी जो जल्दबाजी है या सेहूं ज्यादा खराब हो गए तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी चाहिए।
1: जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मौसम के अनुसार ध्यान रखना चाहिए कोई अपा खाड़ा खोचरा को। तो अब देखो खेती बाड़ी का टेम पूरा हो चाले, घड़ी अपन इशारे कर रही है,
0: आप अभी सावचेती सु चाला ला चालवा के अठे सु चालनो पड़े लो।
1: बिल्कुल, तो किसान भाई देव महेश भाई ने और
0: चंचल ने आज्ञा
1: करा
0: राम राम सा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, साथ ही हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद में आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में

न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजेपी के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रामकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दीराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में

दावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात उड़िया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत
एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा

के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद टेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। टेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित संसद समीक्षा सुन रहे थे। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है और अब आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। फिल्म संगीत की इस कड़ी में अब अगला गीत सुनेंगे आप परदेश फिल्म से सोनू निगम की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आपने सुना परदेश फिल्म से ये गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप में शैमुअल सेबियन के साथ ड्रॉ खेला। इगा स्वायतेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से पुणे में आयोजित होगी। और अफगानिस्तान ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 में जगह बनाई। टूर्नामेंट के 10 टीम तय। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शतरंज से, जहां आर प्रज्ञानंदा का लगातार अच्छा फॉर्म जारी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में अमेरिका के सैमुअल सेबियन के साथ आसान ड्रॉ खेला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष वरीयता प्राप्त फेबियानो कारुआना इस वर्ष के टूर्नामेंट में 10 खिलाड़ियों के 9 दौर की इस प्रतियोगिता के पहले दौर में जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे, जिससे उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। उन्होंने नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फोरेस्ट को हराया। विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जाओखीर सिंदारो ने अमरीकी खिलाड़ी लेवोन अरोनियन के साथ अंक साझा किए, जबकि जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अमरीका के वेस्ली सो से बाजी ड्रॉ खेली। नीदरलैंड्स के अनीश गिरी ने

0: फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञानंदा के लिए यह एक अच्छी शुरुआत रही, लेकिन प्रज्ञानंदा ने अमरीकी खिलाड़ी सैमुअल सेवियन के साथ बाजी ड्रॉ खेली। दोनों खिलाड़ी 48 चाल के बाद अंक बांटने पर सहमत हो गए। कारुआना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फोरेस्ट को 55 चाल में हराकर एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अंतिम क्षणों में फोरेस्ट की गलती का फायदा उठाकर पूरे अंक हासिल किए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में प्रज्ञानंदा ने एक राउंड बाकी रहते ही जावोखीर सिंदारोव को हराया था। इसके साथ ही प्रज्ञानंद जून में प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रख चुके हैं। लगातार उनका ये प्रदर्शन दर्शाता है कि किस तरह के फॉर्म में प्रज्ञानंदा है अभी शतरंज के खेल में। अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर। इगा स्वायतेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शीर्ष खिलाड़ी और छठी बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना स्वाइडर को 64 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराया। सेमीफाइनल में स्वायतेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वेतलिना से होगा। स्वेतलिना ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रा को 3-6, 6-0, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। महिला सिंगल्स में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, किन किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी?
2: देखिए प्रशांत, अगर आज के मुकाबलों की बात करें तो स्वितोलोना जो है उनका मुकाबला बहुत बेहद रोमांचक रहा। अलेक्जेंड्रोवा ने उनको पहला सेट हराया, लेकिन उन्होंने दूसरे और तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 6-0 और 6-3 से मुकाबला अपने नाम किया। अगर स्वायतेक की बात करें तो उन्होंने एक तरफा मुकाबला जीता है जहां उन्होंने 6-2 और 6-1 से जीत दर्ज करी। अगर हम कल के होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो बेलिंडा बेनसिच और कोको गॉफ, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि कोको गॉफ जो है बेहतरीन फॉर्म से गुजर रही है। वहीं एक बहुत कमाल की टक्कर हमको देखने को मिलेगी नाओमी ओसाका और एलिना रायबकीना के मुकाबले में। तो इन मुकाबलों के जो विजेता हैं वो 13 अगस्त को सेमीफाइनल में भिड़ेंगे, जबकि एक सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इगा स्वायतेक और स्वितोलिना ने अपनी जगह पक्की कर ली है। और 14 अगस्त को महिला सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा।
1: ये अपने महिला वर्ग के बारे में बताया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में भी बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अगर हम बात करें तो लुसियानो डार्डरी की बात हो गई या फिर ब्रेंडन नाकाशिमा, राफेल जोडार जो है प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, तो इन खिलाड़ियों से क्या कुछ उम्मीदें होंगी?
2: जी, अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में कार्लोस अल्कराज, जियानिक सिनर, नोवाक डीजोकोविक जैसे खिलाड़ी बाहर है, तो इन सभी जो खिलाड़ियों को काफी अच्छा मौका है वो इस मुकाबले में अपने जो उनका तरीका है उसको बेहतर तरीके से खेलकर देख सकते हैं। जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी और राउंड ऑफ 32 में ही वो बाहर हो गए थे।
1: जी,
2: अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जैसा कि आपने बताया, नाकाशिमा और डाडेरी के बीच और जोडार और आर्थर फिल्स के बीच। वहीं कल भी दो मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर एक मुकाबला जेकब मेंसिक और बेन शेल्टन के बीच होगा। ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक खेलते हुए आए हैं और आगे भी इसी प्रकार से इनसे उम्मीद की जा सकती है। इनका भी फाइनल जो है 14 अगस्त को ही खेला जाएगा।
1: जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही वर्ग में, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में, कौन से खिलाड़ी बाजी मारते हैं और कैनेडियन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम करते हैं। अब चलते हैं महिला हॉकी की ओर। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कल से पुणे में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता के तीन वर्गों में कुल 30 टीम हिस्सा लेंगी। सुनते हैं विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट।
3: 12 से 23 अगस्त तक होने वाली जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में टीमों को डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी में रखा गया है। इस प्रतियोगिता में टीमें न केवल खिताब के लिए बल्कि अपने से ऊपर वाले डिवीजन में पहुंचने का भी प्रयास करेंगी। डिवीजन ए में 12 टीमें हैं जिन्हें 4 पूल में रखा गया है। पूल ए में झारखंड, पंजाब और चंडीगढ़, पूल बी में हरियाणा, ओडिशा और बंगाल, पूल सी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर तथा पूल डी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। डिवीजन ए की 12 टीमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस डिवीजन में 11वें और 12वें स्थान पर रहने वाली टीमें अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में चली जाएंगी। डिवीजन बी में शामिल 10 टीमों को दो पूल में बांटा गया है। पूल ए में आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, केरलम और मिजोरम, जबकि पूल बी में कर्नाटक, उत्तराखंड

0: तमिलनाडु, बिहार और गोवा शामिल हैं। इस डिवीजन की शीर्ष दो टीमें डिवीजन ए में पहुंचेंगी, जबकि सबसे नीचे की दो टीम डिवीजन सी में चली जाएंगी। डिवीजन सी में शामिल आठ टीमों को दो पूल में बांटा गया है। पूल ए में अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और त्रिपुरा, जबकि पूल बी में पुदुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना की टीम शामिल है। इस श्रेणी की शीर्ष दो टीम अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में प्रवेश करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्सकैन।
1: और इसी सप्ताह के अंत में 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच विश्व कप, हॉकी विश्व कप भी खेला जाएगा, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में होना है। तो इस प्रतियोगिता के साथ साथ विश्व कप पर भी सबकी नजरें होंगी। और अब बात स्कॉश पर। एचसीएल स्कॉश पीएसए चैलेंजर टूर इवेंट के

0: और अब बात स्क्वॉश पर। एचसीएल स्क्वॉश पीएसए चैलेंजर टूर इवेंट के पुरुष सिंगल्स के शुरुआती राउंड में अरिहंत केएस ने स्विट्जरलैंड के लियंड्रो मैनहार्ट को 11-6, 9-11, 13-11, 11-4 से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: कोलकाता में महिलाओं के पहले राउंड के मुकाबलों में कल पूजा आरती रघु ने वापसी करते हुए काशवी मंगल को 13-15, 11-6, 11-6, 7-11 और 11-9 से हराया। वहीं अनन्या नारायण ने आना सिंह को 8-11, 11-2, 11-8, 11-8 से मात ली, जबकि वसुंधरा नांगरे ने अपने ही देश की जैनेट विधि को 11-8, 11-5, 11-5 से शिकस्त दी। पुरुषों के वर्ग में भारत की उम्मीदें चौथे सीड सूरज कुमार चंद और ओम सेमवाल पर टिकी रहेंगी, जबकि राहुल बैठा और संदेश पलानीवेल रवि कुमार टॉप संदेश पलानीवेल रवि कुमार टॉप 10 से बाहर हैं। महिलाओं के वर्ग में भारत की तन्वी खन्ना टॉप सीड है, जबकि राधिका सुंथतिरा सीलन पांचवें और आकांक्षा सालून के छठी सीड है। इस इवेंट में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग के लिए $9,000 की इनामी राशि है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में हसन मैनशावी, रवि दीक्षित, अरिहंत केएस, संदेश पलानीवेल, रवि कुमार, दीपक मंडल और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में पूजा आरती रघु, रिवा निम्बालकर, अनन्या नारायणन, अंजलि सेमवाल, व्योमिका खंडेलवाल, वसुंधरा नांगरे, अनिका दुबे और सहाना कलेवानन से मुकाबले जीते हैं। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: श्रोताओं को बता दें कि एचसीएल स्क्वॉश पीएसए चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए और अब ये कोलकाता में आयोजित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू कश्मीर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को कुल 2,71,00,000 रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए। श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बुल्गारिया में आयोजित ब्रेव CF107 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए ओवैस याकूब को सम्मानित किया गया। ओवैस कश्मीर के पहले पेशेवर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA खिलाड़ी हैं। कंपाउंड पैरा तीरंदाज शीतल देवी को दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की व्यक्तिगत ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भी सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले एक दिवसीय विश्व कप 2027 में जगह बना ली है। आयरलैंड के खिलाफ जारी 5 वनडे मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में जीत दर्ज कर अफगानिस्तान ने विश्व कप 2027 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में 3 विकेट से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में जगह बना ली है। इससे पहले 2003 के विश्व कप में अफगानिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व विजेता रह चुके श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों को मात दी थी। 2027 विश्व कप में एक बार फिर अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। इस बार वेस्टइंडीज टूर्नामेंट में सीधे जगह बनाने में सफल नहीं रही। वेस्टइंडीज को अगले साल फरवरी में होने वाले क्वालिफायर्स के मुकाबले खेलने होंगे। इन मुकाबलों के परिणाम के आधार पर टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। क्वालिफायर के विजेता को 2027 विश्व कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज के जरिए पहला राउंड खेलेंगी। ये लगातार दूसरा मौका है जब वेस्टइंडीज को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले खेलने होंगे। वनडे विश्व कप 2023 में भी वेस्टइंडीज क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। अफगानिस्तान के क्वालिफाई करने के साथ ही वनडे विश्व कप 2027 में 10 टीमें तय हो गई हैं। ये टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के चलते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में आयरलैंड को 31 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से हराया। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंद शेष रहते 206 रन पर सिमट गई थी। टीम के राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। और उधर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी तो कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं। यह श्रृंखला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर बेहद अहम है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष टीम में घरेलू क्रिकेट में जो जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अगर हम अकीब नबी की बात की जाए तो 60 विकेट लिया और जम्मू कश्मीर को उन्होंने पहला रणजी ट्रॉफी भी

0: तो क्या कुछ नजरें होंगी उन पर?
1: देखिए, आकिब नबी डार ने प्रशांत जसप्रीत बुमराह की जगह पर अपना स्थान पक्का किया है टीम में, और सबसे ज्यादा इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी जब रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 10 मुकाबलों में 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को उनका पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जिताया था
0: जी।
1: इस प्रतियोगिता में इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था, और इसी सेंसेशन के चलते आईपीएल में इनको बहुत ही अच्छा प्राइज मिला था, 8.40 करोड़ का प्राइज मिला था। लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा, लेकिन अगर हम बात करें घरेलू क्रिकेट लंबे फॉर्मेट की तो आकिब नबी डार एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
0: अगर हम देवदत्त पड्डीकल जिनको टीम में शामिल किया गया, विशेष अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 700 प्लस रन, उसके बाद आईपीएल में जब वो आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को वन डाउन आकर के डोमिनेट करके उन्होंने जिताने में बहुत मदद की, अब टीम में उनको जगह मिली और अभी अभ्यास मैच में उन्होंने एक शतक लगाया, कैसे देखते हैं आप उनको?
1: ये अभ्यास मैच में अभी प्रशांत देवदत्त पड्डीकल ने 142 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले श्रीलंका से एक घरेलू सीरीज भी खेली जा रही थी जिसमें 3 इनिंग में 173 रन जो है देवदत्त पड्डीकल ने बनाए थे। अगर आईपीएल की बात करें तो करीब 500 रन का योगदान उन्होंने दिया था। आखिरी मुकाबला नवंबर 2024 में खेला था और अब अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को लेकर वो रेडी है।
0: साई सुदर्शन टीम से बाहर हो गए, उनकी जगह सरफराज खान को टीम में जोड़ा गया जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में टीम में शामिल थे, अब जो है 2 साल बाद उनको टीम में जोड़ा गया है, तो क्या कुछ होंगे उनसे उम्मीदें?
1: देखिए, सरफराज खान को ये फर्क नहीं पड़ता है शायद कि उनको टीम में रखा जाए या ना रखा जाए, वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं। विजय हजारे में 303 रन, रणजी ट्रॉफी में एक बहुत बड़ा दोहरा शतक 227 रनों का, इसके अलावा 53 का औसत, और सैयद मुश्ताक अली में 65 का औसत, विजय हजारे में 75 के औसत के साथ 303 रन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा उनका
0: जी। और श्रोताओ, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
3: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक

0: 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
3: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसको सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
4: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
5: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
5: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शन

0: हमलों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ।

0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हलचल फिल्म के इस गाने के साथ, उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में, समीर के बोल, विद्यासागर का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए दस्तक फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल राजेश रोशन का संगीत और आवाज है उदित नारायण की।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम

देताली फिल्म से आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और शेखर रजवानी की आवाज में गाना, विशाल ददलानी के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रेया घोषाल और शेखर रबजियानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम बिन फिल्म से, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, निखिल विनय का संगीत।

महालक्ष्मी अय्यर और राघव संचार की आवाज में आप सुन रहे हैं 1 2 3 इस फिल्म से गाना। आदित्य धर के बोल और म्यूजिक है राघव संचार का।

0: आज के फनकार। दोस्तों आज है खास दिन। जी हाँ, आज है अभिनेता सुनील शेट्टी का जन्मदिन। उनको विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोले क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।

0: जिया।
1: 1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया। कमी नहीं है लड़कियों।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित

होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने विलेन।

0: दोस्तों, ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग PK Nair, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत। नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला,
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई का संपादित अंश।

0: This is the Delhi station of Akashwani. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
1: Maniye Sabha Sado, Maniye Sabha Pati Ji. Now question number 241, Sriman G.C. Chandrasekhar Ji.
2: Prashn Sankhya 241. क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
1: Now I will mention. They never persuade me. You are always persuading me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except the Gargaji. I am always under the pressure of Gargaji, not of anybody else. Honorable Minister, First Supplementary Dr. Lakshmikant Padway Ji. Then First Supplementary G.C. Chandrasekhar Ji. You take your seat, I am calling him.
3: Sir, my.
1: You take
3: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
1: Sir, you please,
3: this is my request. Do not off the mic, sir.
1: I am allowing you. Sir. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee Ji. I
4: want to know from the ministers that what are the benefits of offshore energy?
2: श्रीपद यशो नाइक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री
5: सभापति महोदय भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर तमिलनाडु में लगभग 50 से 54% और गुजरात में 30 से 40% तक सीयूएफ उपलब्ध है जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है माननीय अध्यक्ष महोदय ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई

0: भी बच जाते हैं तो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है, सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेदर फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और पोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी
2: ड्यू टू दी चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड. Is there any losses? If it is there, has it been measured? And I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and flood and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
3: Honorable Minister,
0: माने सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. ये जो प्रश्न है जो आपके मिलने का है और इसे इससे संबंधित नहीं है.
4: बिहार से मेड रेन आते धूप पीएम टुडे.
5: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10:06 हुए हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संगीत का आगाज हमने किया है आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। फिल्म है अफसाना प्यार का। अनजान के बोल है संगीत बप्पी लहरी का।

आइए फिल्म संगीत का अगला गीत हम सुनेंगे, हाथी मेरे साथी फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: 的好
1: 啊，啊村长是咖喱客栈，
0: 啊村长啊村的好啊，
1: 啊村长是咖喱客栈，
0: कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा
1: सुन

0: मस्त नजारे चलते चलाते तू भी सुन जा
1: सुन

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना। लीजिए सुनिए अगला गीत आप आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में। मजनू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का।

कुदरत फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। निजी सुनिए अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में, फिल्म है जाल, एसडी बर्मन का संगीत।

मुकेश की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत आप सुनेंगे कविता और कुमार सानू की आवाज में, फिल्म है 1942 लव स्टोरी।

0: हो चुकी।
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना, दुल्हारी फिल्म से। फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे, दिल तो पागल है फिल्म से। लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोले, संगीत उत्तम सिंह का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने

0: स्वतंत्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।